मीडियम वेव 254.5 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 जून सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और

0: टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, Mr. Modi will hold talks with the French President Emmanuel Macron, jointly launch Bharat Innovates and exchange views on key regional and global issues, and also attend the G7 summit. Upon arrival, the Prime Minister received a warm and enthusiastic welcome from the members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. Our correspondent has the details.
3: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation

0: अब सुनिए पंडित किरण मिश्रा की भक्ति रचना अनूप जलोटा के स्वर में।
1: एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती हैं, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी।

0: इस भजन के साथ ही सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि संकेत। इस क्रम में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं मृदा शौर्यीकरण के बारे में।
1: किसान भाई, हरित क्रांति से अब तक रासायनिक दवाइन जैसा कवकनाशी कीटनाशी के अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिससे माटी में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीव का हानि पहुँचा थी। एक ही साथ है यह वातावरण और मनई के खातिर हानिकारक है। रसायन के प्रयोग से न केवल आर्थिक हानि हो थी बलुक मनई के स्वास्थ्य खराब होत है। ऐसे जरूरी है कि ऐसा तकनीकी अपनाई जाए जिससे इन सब से बचाव हो सके। मृदा शौर्यीकरण एक ऐसी तकनीक आए जिनमें रसायन रहित

0: વિધિ અપનાઈ જાતથી જેવું વાતાવરણમાં ઘલાય સહયોગી હિવે એમાં અધિક લાગત નહીં લાગતા યા મૃદા જનિત રોગન કે નિયંત્રણ કે સાથ સાથ મૃદા કીટ ખરપતવાર નિયંત્રણ ઔ મૃદામાં પોષક તત્વ કે ઉપલબ્ધતા જૈસે નાઇટ્રોજન ફોસ્ફોરસ બઢાવે વા કૈયક લાભદાયક સૂક્ષ્મ જીવન કે ક્રિયાશીલતા બઢાવેમાં સહાયક હિવે या विधि का किसान भाई बड़े पैमाने पर नहीं कह सके तो यही नर्सरी बनावत समय जरूर प्रयोग करे चाहिए। काहे की नर्सरी क्षेत्र छोट हो थी वह तो हुआ या क्रिया का कार्बनिक मृदा सुधारक कुछ रसायन व मृदा पलवार के साथ प्रयोग कीन जा सकत है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत नम भूमि का पतली सफेद पारदर्शी प्लास्टिक के पॉलीथीन से ढक दीन जात है। ऐसे यह पॉलीथीन सूर्य के गर्म विकिरण का मृदा सतह पर संरक्षित कर देती और मृदा सतह के ताप 15.20 सेंटीमीटर गहराई पर बाहर के ताप से 10.15 सेंटीमीटर तक बढ़ा देती। जैसे मृदा में उपस्थित माध्यम ताप संवेदी और एके अलावा नम मृदा हो से ताप बढ़े से अंकुरित हो वाले अवांछनीय पौधन के बीज मर जाते। या मेर से ये तकनीक केवल पादप रोगन के प्रबंधन में सहायक है बलुक या संपूर्ण पौध संरक्षण तकनीक के विकल्प आए। मृदा जनित रोग नियंत्रण में यह सहायक होती। यह लहसुन में लागे वाले सफेद गलन कारक पादप रोग जनकन के संख्या का 75 से 83% तक कम कर देती। अन्य पादप पीड़कन के खातिर यह प्रभावी ही। निश्चित सौर्य ऊर्जीकरण के द्वारा मृदा पीड़कन के नाश होते है। कई लाभकारी मृदा सूक्ष्म जीव यह दौरान जीवित रह जाते हैं। सौर्य ऊर्जाकरण के बाद अपनी क्रियाशीलता में वृद्धि एके अंतर्गत एस्परजिलस माइकोराइजा कवक अन्य परजीवी कवक औ जीवाणु आदि आवत हैं। एके अलावा यह लाभकारी कीट सौर ऊर्जीकरण के बाद परजीवी पोषक कीट के खातिर अधिक प्रतिरोधी बन जात है। सौरीकरण के दौरान मृदा में उपस्थित केचुआ निचली सतह में चले जाते हैं और बाद में ऊपर आ जाते हैं। इनसे लाभकारी जीव के संख्या ऊपरी सतह से कम हुई जाती पर निचली सतह में ही पाए जाते हैं। लाभकारी जीवाणु जैसा वैसिलस स्यूडोमोनास स्पीसीज सौरीकरण के दौरान कम संख्या में हो जाते हैं बाद में तीव्र वृद्धि करके संख्या बढ़ा लेते हैं। मृदा सौरीकरण खरपतवार के नियंत्रण में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है और एके अलावा या कईक जंगली जई ओरोबेंकी जोहनसन घास गोखरू हिरन खुरी चुलाई आदि में नियंत्रण करत है। मृदा के सौरीकरण का अधिक प्रभावी बनावे खातिर यह बात के ध्यान रखना चाहिए कि एकर सही समय में ही और सही विधि उपयोग करब बहुत जरूरी है। एके नीता सबसे पहले पारदर्शी पॉलीथीन के चुनाव करी काहे कि पारदर्शी पॉलीथीन सौर विकिरण का अंदर तक पहुंचावत ही और ताप बाहर के तुलना में बढ़ जात है। दूसर क्रिया हमेशा अत्यधिक गर्म महीना जैसा अप्रैल से मध्य जून में करे। हमेशा भूमि में सिंचाई दई के और 40.60 सेंटीमीटर तक गहराई तक नमी रहे। यही पॉलीथीन से ढकी और खेत समतल रहे। अधिक ढेला और ऊंचाई निचाई हो पर यह कम प्रभावी होता है। पॉलीथीन का लगावे के बाद एक किनारे का भूमि में अच्छी तरह से दबा दे ताकि एक अंदर बनी बास ताप बाहर न निकल पावे। पॉलीथीन का अधिक दबाई खींची ना और पुरानी पुती पॉलीथीन के प्रयोग न करी।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत अभी आपने जानकारी प्राप्त की मृदा शौर्यकरण के बारे में। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस से पाठ।

क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के थे। मीडियम वेव 254.5 मीटर अर्थात 1189 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज सवेरे कार्यक्रम होगा प्रातः 7:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सिंधी कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:21 पर, इसमें आप सुनेंगे बघेली पॉडकास्ट बदकहाओं के अंतर्गत प्रगतिशील सब्जी उत्पादक किसान राज बहोर कुशवाहा।

आहा से सब्जी उत्पादन में सफलता के सूत्र, जैविक खेती, चुनौतियों और बाजार विषय पर गणेश भाई का सार्थक संवाद। सुगम संगीत में महिला महफिल गजल कार्यक्रम का लुत्फ लीजिएगा सुबह 10:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे संगीत प्रभा में 7:20 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत होगा 8:30 पर।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुगम संगीत में महफिल गजल कार्यक्रम का लुत्फ लीजिएगा सुबह 10:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, आज भी राज्य में अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मिलो दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपए की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
3: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चलाया, हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है।

0: साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेषण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपों मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है संगीत प्रभा।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे

0: तो पैसे गवाओगे।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
1: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: श्रोताओं सुबह का वक्त है तो क्यों ना आज गीत का आनंद लेने से पहले जरा गौर कर लें योग आसन तकनीक और उसके लाभ के बारे में। योग आसन यानी बैठने की मुद्रा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि योग करने से केवल हमारा तन स्वस्थ नहीं होता बल्कि मन भी शांत और स्वस्थ रहता है। रही बात इसके आसन की तो इसमें बहुत से आसन हैं जिन्हें हम श्रेणियों में बांट सकते हैं। ध्यान मुद्राओं वाले आसन जिसमें आते हैं पद्मासन, सुखासन और वज्रासन। हर आसन के अपने फायदे होते हैं और इस आसन का ये लाभ है कि इसमें मन शांत होता है। दूसरा है खड़े होकर किए जाने वाले आसन जैसे वृक्षासन, त्रिकोणासन। इसके करने से शरीर बलवान और संतुलित बनता है। तीसरा है लेट के किए जाने वाले आसन जैसे भुजंगासन और धनुरासन। इससे पेट और रीढ़ की हड्डी के लिए लाभ होता है। अब बात आती है विश्राम मुद्राओं की जिसमें आते हैं शवासन जो शरीर और तंत्रिका तंत्र को आराम देते हैं। योग दर्शन के 8 अंगों में ये अष्टांग योग में आसन तीसरा चरण है जिसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। योग आसन का मूल उद्देश्य शरीर को स्थिर और मन को शांत करना है। इसकी सही तकनीक में मुद्रा, श्वास नियंत्रण और ध्यान का संतुलन शामिल है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से सही तकनीक के साथ ध्यान करना ही हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। तो चलिए आज से ही जुड़ते हैं योगासन से इस गीत के आनंद के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन। क्योंकि तन को स्वस्थ रखने के लिए मन को धीरज रखना पड़ता है।

इस गीत के साथ ही संगीत प्रभा का ये अंक संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: जी बिल्कुल, क्या खूब लिखा है। पंजाबी जबान की समृद्ध विरासत को अपनी लेखनी में बड़ी ही सुंदरता से सहेजे गायक सतिंदर सरताज ने कि इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। और जैसा कि पार्श्व में बज रहे इस सुंदर गाने के बोल भी हैं कि थकना या हारना इंसान की फितरत में नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि कोशिश ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करके सफलता प्राप्त करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहें अपने लिए, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए।
1: I couldn't agree more. That's a beautifully sung song and the message given is even more beautiful. Well, try hard. If you fail once, if you fail twice, do not be disappointed because success is not too far from you. If you try hard and don't rely on the luck and are no shortcuts, just work hard and be focused. That's what we can see.
0: बिल्कुल, और इसी से related एक हिंदी में कविता भी है कि लहरों से डर कर नौका

0: पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में उसके हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसको अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी बिल्कुल। श्रोताओं, इसी सुंदर विचारों के साथ इन्हीं आज की इस खूबसूरत सुबह में आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: मुकेश, आपको भी मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 AM वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक एवरी डे। बट टुडे इज स्पेशल, टुडे इज 14th of June एंड इट्स अ संडे, इट्स अ रिलैक्सिंग डे। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, do not think too much and don't take any load, just relax and live the day.
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस कड़ी में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के आज के मुख्य समाचारों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। श्री मोदी ने इसके लिए प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने लिखा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध और मजबूत बने हुए हैं।
1: And as part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga, that is IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga, MDNIY, and Habilt, will organize a landmark global online yoga event today. The online yoga session will be held from 6:15 AM to 7:35 AM, and that's just a few seconds left. So this was the online session that was just conducted, and it's expected to witness participation from more than 130 countries. Ayush Minister Pratap Rao Jadhav will also participate in the initiative. Ayush Ministry said that the event aims to create a new world record for the most viewers for a YouTube live yoga stream, bringing together yoga practitioners and wellness enthusiasts from around the world on a single digital platform. The ministry has invited citizens, yoga practitioners, educational institutions, wellness organizations, community groups, and members of the Indian diaspora worldwide to join the event and contribute to this historic global endeavor. It added that the initiative is designed to showcase the universal appeal of yoga and its growing acceptance as a powerful tool for promoting holistic health and also well-being.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी मौजूद हैं। ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना वर्ष 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेही ने कहा है कि तुरंत किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक के अनुसार श्री बागेही ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की।
1: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bangalore, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the

0: Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. And this lander with artificial heaters can survive harsh weather conditions on the moon. He added that this will help long-duration lunar exploration in the future missions.
1: और अब बात खेलों की, तो भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई थी और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा।
0: In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. India holds a strong record against Pakistan in Women's T20 Internationals, winning 13 out of their 16 encounters. In another clash today, debutants Netherlands will take on Bangladesh and the match will start at 10:30 a.m. Indian Standard Time. Earlier, West Indies beat defending champions New Zealand by 7 wickets in the Group B clash in Southampton, England today. New Zealand posted 162 for the loss of 6 wickets. In Group B action, Scotland defeated Ireland by 40 runs at Old Trafford in Manchester yesterday. Batting first, Scotland scored 161 for 5 in 20 overs, and Ireland were then bowled out for 121 in 19.1. Overs.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात महानगरों की खबरों का, तो इस कड़ी में जानते हैं पहले चेन्नई की खबरें तन्वी से।
0: द स्टेट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर राजमोहन हैज सेड दैट लेसन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी HTML एंड कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन 5,000 स्कूल्स ऑन अ पायलट बेसिस। आफ्टर हिज फर्स्ट रिव्यू मीटिंग ऑफ द स्कूल डिपार्टमेंट ही सेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इन स्कूल्स वुड बी द फर्स्ट साइट। ही सेड दैट द आइडिया इज टू create the students to have their own ChatGPTs and Geminis in the future. And he said that training would be carried out for teachers for the new class 1 to 3rd textbooks and trainers can be roped in. And we have some more news from Chennai itself. In view of the delay in re-evaluation of CBSE class 12th answer scripts and the NEET re-exam, Tamil Nadu, along with several other states, has sought a one-month extension of the admission deadline from All India Council for Technical Education. According to the AICTE academic calendar for 2026-27, the last date for admissions in technical courses against the vacancies is 14th of August. It also asks the colleges to begin classes for first-year students from 1st of August. The engineering rank list is expected to be released on 29th of June, but it will depend on the re-evaluation results.
1: और श्रोताओं, इधर दिल्ली में आज यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर 500 से अधिक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन राजधानी के यमुना घाटों में सफाई में भाग लेंगे। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने यमुना के घाटों और तटों को स्वच्छ रखने में जनता से सहयोग की अपील की है। इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की है। परिषद ने बताया कि ये छूट उन करदाताओं को दी जाएगी जो अपने संपत्ति कर का भुगतान इस महीने की 30 तारीख या उससे पहले कर देंगे। और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिला और यातायात पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मियों को संयुक्त पैदल गश्त के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कर्मियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दफ्तर के काम और आंतरिक बैठकों से बचने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही जिला और यातायात पुलिस की टीम सप्ताह में 4 दिन संयुक्त रूप से गश्त करेगी।
0: From Delhi, let's move towards Bangalore. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has highlighted the growing presence of India in the field of research and innovation. Speaking at the 6th

0: exponentially across the globe. He said that a conducive ecosystem was created for the startups in the country, resulting in India today having 2,30,000 startups that have fetched 25 lakh jobs in Tier 2 and Tier 3 cities. The minister added that the policy reforms and industry involvement has increased research and innovation activities in biotechnology, deep ocean exploration and also nuclear energy.
1: और अब चलते हैं मुंबई की तरफ. तो मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री आशीष शेलार ने रेलवे, बृहन्मुंबई नगर निगम बेस्ट, जिला प्रशासन, मेट्रो प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों को मुंबई में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने और समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है. चर्चगेट और विरार के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे बेहतर जल निकासी के लिए 15 सूक्ष्म सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें से 4 इस वर्ष पूरी हो चुकी हैं. इसके अलावा बृहन मुंबई नगर निगम ने नागरिकों को उच्च ज्वार के दौरान या ऐसे दिनों में समुद्र तट के पास ना जाने की सलाह दी है. बीएमसी ने सितंबर तक मुंबई में आने वाले ज्वार का विस्तृत कार्यक्रम भी इस संदर्भ में जारी किया है.
0: And from Mumbai, let's move towards Hyderabad. During the combined graduation parade of the 217 corps at the Air Force Academy in Dundigal, Hyderabad, Defence Minister Rajnath Singh urged newly commissioned Indian Air Force officers to rapidly adapt to evolving warfare technologies. Reviewing the parade, which notably included the first batch of women cadets trained at the National Defence Academy, Rajnath Singh Minister emphasised the critical need for continuous learning, innovation and vigilance in the modern defense landscape. He advised the officers to view global conflicts as learning opportunities, emphasizing that smart work and technological mastery are vital for national security. The ceremony, attended by numerous defense officials, concluded with spectacular aerial displays by the Su-30 MKI, the Sarang helicopter display team, and also the Suryakiran aerobatic team, underscoring the high standards of readiness expected from the new graduates.
1: और अब बात पश्चिम बंगाल की. तो कोलकाता में 15 जून से 5 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल भवानीपुर में इस अभियान की घोषणा की. इस पहल के अंतर्गत सड़कों की सफाई, अवैध अतिक्रमणों को हटाना, कार पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और एक विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और उससे पहले 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है. और अब बात करते हैं मौसम की. इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मौसम की. तो राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में आज सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है. आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है. अगर बात की जाए कोलकाता में तो आज वहां आंधी बारिश का अनुमान है. शहर में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
0: Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 28 degrees and maximum will be around 39 degrees. Bangalore is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature minimum was 20 degrees and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with intermittent rain. The temperature will hover somewhere between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम आज सवेरे में इतिहास के पन्नों को पलटने का. लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में. आज विश्व रक्तदान दिवस है. प्रतिवर्ष आज के दिन यानी कि 14 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है. वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है. अगर इस कड़ी में बात की जाए किसी जरूरतमंद को कुछ देने की, तो इस संदर्भ में एक हिंदी का

0: प्रसिद्ध दोहा भी है कि देह धरे का फल यही, देय देय कछु देय, देह खेह जब होएगी कौन कहेगा देय। इसीलिए हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी कॉज। इफ यू डोनेट ब्लड देन देयर इज नो लॉस ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, दिस इज द फैक्ट, एंड रादर योर बॉडी मेक्स न्यू ब्लड एंड दिस इज वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। सो वन शुड डेफिनेटली डोनेट ब्लड एवरी 3 months इफ यू आर अ हेल्दी बॉडी। एंड दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर डे, June 14th, एंड every year World Blood Donor Day is celebrated, and every year the theme for this year is different. This year's theme is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives.
0: बिल्कुल। और अब बात करते हैं आज के दिन की इतिहास के बारे में कि आज का दिन क्यों अपने आप में खास है। तो 1901 में पहली बार आज ही की तारीख को गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था।
1: Let's go a little back and talk about 1777 when the United States adopted the stars and the stripes as its official flag, an occasion now observed annually as their flag day.
0: 1999 में थाबो मेबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
1: In 1958, Dr. C.V. Raman received the Lenin Peace Prize in Kremlin. In 1995, RBI announced the introduction of appointing ombudsman to redress grievances and disputes of bank customers. In 1998, S. Vijayalakshmi won National Women's A Chess title in Mumbai.
0: और 2004 में पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आज ही के दिन आयोजन हुआ। और अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जिनकी आज है जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि। आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी कार्यमाणिकवम श्रीनिवास कृष्णन की। मद्रास विश्वविद्यालय ने इन्हें DSC की उपाधि प्रदान की थी। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीनिवास कृष्णन 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे।
1: And today is the death anniversary of Fakir Mohan Senapati, often referred as the Utkala Byas Kabi. Odisha's Vyas was an Indian writer, poet, philosopher and social reformer. He played a leading role in establishing the distinct identity of Odia, a language mainly spoken in the Indian state of Odisha. He is regarded as the father of Odia nationalism and modern Odia literature. Senapati dedicated his life to the progress of Odia language in the later 19th and early 20th century. He is also called the father of Odia fiction. At his native place, school, colleges and universities are constructed in his memory, like Fakir Mohan College and Fakir Mohan University.
0: और श्रोताओं, अब लेखन से वाद्य यंत्रों की अगर और हम पहुंचे तो आज ही पुण्यतिथि है रुद्र वीणा वादक के नाम से समूचे देश में प्रसिद्ध उस्ताद असद अली खां की। खान साहब को वर्ष 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री असद अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। उन्हें वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा तानसेन सम्मान तथा वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से विभूषित किया जा चुका है।

0: क्या खूबसूरत नगमा था ये।
1: बिल्कुल।
0: और आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के आसिफ की। आसिफ ने ही भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनाई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये।

बहुत कम फिल्में और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करने वाले फिल्मकारों में के आसिफ का नाम शायद अकेला है। भारतीय फिल्म जगत के इस महान फिल्मकार का पूरा नाम करीम आसिफ था। वैसे मुगले आजम के अलावा के आसिफ ने और भी कई फिल्में बनाई। इनमें वर्ष 1945 में आई फिल्म फूल, 1951 में बनी फिल्म हलचल भी शामिल है। लेकिन क्लासिक तो क्लासिक ही होता है, तो सुनते हैं उसी फिल्म से एक और ये गीत।

सुशांत ने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, लेकिन उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। उनकी पहली फिल्म काय पोचे थी, जिसमें उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। काय पोचे के बाद सुशांत सिंह राजपूत, शुद्ध देसी रोमांस, वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ इस फिल्म में दिखे। फिल्म सफल रही और सुशांत का फिल्मी करियर परवान चढ़ने लगा। श्रोताओं, आज सुशांत तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी खास करके युवाओं में देखने को मिलती है। तो सुनते हैं उनकी फिल्म राब्ता पर फिल्माया गया ये गाना।

0: And now there's another personality that we are going to talk about, Jubin Nautiyal. Today is his birthday as well, an Indian playback singer. And the song that we are going to play for him, that song's music has also been composed by nobody else but Pritham. So let's hear that beautiful track.
1: पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर
2: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो इसी गाने के साथ दीजिए मुकेश और तन्वी को इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट

0: लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई

0: दिल्ली के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि पैसे से भी कीमती है वो जज्बा जिसमें हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आज है विश्व रक्त दिवस, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और हाँ, स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए धन्यवाद देना। आपको बता दें कि ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। तो आइए इस बात पर हम सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में निदा फाजली की गजल फिल्म सरफरोश के लिए। संगीत जतिन ललित का है।

श्रोताओं, रक्तदान विषय पर जागरूकता फैलाना इसलिए आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं, प्रसव और गंभीर बीमारियों जैसे थैलेसीमिया,

और कैंसर के इलाज के लिए सुरक्षित रक्त की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और किसी को कोई मुश्किल ना आए। अब देखते हैं इन्हें क्या मुश्किल है जो ये गा रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, पेश

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, अगर हम स्वस्थ हैं तो रक्तदान की पहल करके हम केवल 1 यूनिट ब्लड से 3 अलग अलग लोगों की जान बचा सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि रक्तदान के बाद हमें किसी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये दान करने के 24 से 48 घंटों के भीतर हमारे शरीर में रक्त की ये मात्रा फिर से पूरी हो जाती है। इसी बात पर सुनते हैं समीर का गीत और आनंद मिलन का संगीत फिल्म अनाड़ी के लिए गीत गाया है उदित नारायण ने।

श्रोताओं, इसीलिए 18 से 65 वर्ष का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन कम से कम 45 किलोग्राम हो, वो रक्तदान कर सकता है और किसी की जिंदगी बचा सकता है।

श्रोताओं, दिल देने दिल लेने की उम्र का सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है। किसी के लिए दिल धड़कने लगता है, लेकिन आइए जानते हैं इनका दिल किसके लिए धड़क रहा है इस गीत के जरिए।

ये गीत था फिल्म फूल और कांटे से, जिसे आवाज़ दी थी कुमार सानू ने। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम शवर्ण। श्रोताओं, एक बार फिर रुख करते हैं अपने मौजू की तरफ। आपको पता है, हमारे जरिए दिए गए ब्लड से अक्सर लाल कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटकों में विभाजित किया जाता है, ताकि उसका इस्तेमाल मरीजों की ज़रूरत के हिसाब से किया जा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं केवल 42 दिन और प्लेटलेट्स केवल 5 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इसीलिए अगर हम ये महादान करना चाहते हैं तो हमें निरंतर रक्तदान करते रहना चाहिए। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है कुमार सानू की आवाज़ में। गीत है, फिल्म है दिल का क्या कसूर से। नवाब आरजू के गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोता, आपको ये भी बता दें कि रक्तदान उन्हें नहीं करना चाहिए जिन्होंने हाल ही में टैटू या पियर्सिंग करवाई हो, फिर एक साल बाद ही रक्तदान करें। दूसरा, किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, मलेरिया हुआ हो या आपको मधुमेह हो या उच्च रक्तचाप हो, या फिर

गर्भवती महिला हो या आपका शिशु अभी छोटा हो, तो भी रक्तदान ना करें। एक बार फिर रुख करते हैं फिल्म संगीत की तरफ। खुद्दार, इस फिल्म में सुनिए राहत इंदौरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

श्रोता, उन सब बातों के अलावा अगर आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान करके आप स्वस्थ बने भी रह सकते हैं। वो ऐसे कि शरीर में अतिरिक्त आयरन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। उसका काम आसान होता है, जैसे नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, कैलोरी जलाता है, शरीर के वजन को नियंत्रित करता है। शरीर स्वस्थ होने के साथ ही रक्तदान करने से अधिक सुख, तो आत्मिक सुख मिलता है जब हम किसी के काम आते हैं। इसलिए खुद का भी ख्याल रखें, ये सोच कर कि क्या पता कब हम किसी के काम आ जाएं। तो स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें नियमित रक्तदान करके, इसी प्रण के साथ। आइए अब हम सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में हसरत जयपुरी का गीत। संगीत अनुमलिक का है, फिल्म है नागमणि।

मोहब्बत से ज़िंदगी को आबाद करते हुए कार्यक्रम के आखिर में आप सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत फिल्म लव के लिए। गीत गाया है SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करुणा।
1: पाण मुरादो रत ॾियण वारनि जा थोरा मञण आहे। हिन ॾींहं जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जनम जे ॾींहं जे मान में कई वई आहे, जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई। दोस्तो, कुझु माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत ॾियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी, पर इहा ॻाल्हि बिल्कुल बि सही न आहे। हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाई सां रत दान करे सघे थो। पण सच त इहो आहे त रत ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणजनि थियूं ऐं दिल जी बीमारियुनि जो खतरो बि घटिजे थो। तव्हांजो ॾिनल 1 यूनिट रत बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो। त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रत ॾियण जी पह कयूं, छो त ही रत कंहिंजी ज़िंदगी बणजी सघे थो। हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंद गीत संगीत जो। अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही सिट्टू खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आखिर कह न बुद्धियों हुंदियो। अहणी जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस करे मलायो वेंदो आहे। वाराणसी में जायल मणिकर्णिका तांबे, जिनके अगते हली रानी लक्ष्मीबाई सडायो वियो, सा मार्शल आर्ट, निशानेबाजी ए घुड़सवारी में माहिर हुई। 1842 में संदस संग झांसी जे महाराजा गंगाधर राव सा थियो। गंगाधर राव जे गुजारे वञण खां पोए अंग्रेजन जी हड़प नीति जी खिलाफत कंदे रानी लक्ष्मी बाई ललकार कई ए चयाई त मां पंहिंजी झांसी कंहिं बि हाल में न ॾींदस। 18 जून 1858 में ग्वालियर जे पासे कोटा जी सराय में बहादुरीअ सां अंग्रेज़न जो सामनो कंदे रानी लक्ष्मीबाई पंहिंजी मातृभूमिअ लाइ बलिदान ॾिनो। ही ॾींहुं अलवतनी बहादुरी ऐं नारी सशक्तिकरण जी मिसाल पेश करे थो। रानी लक्ष्मीबाई जो ही बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी तवारीख में सदा ही अमर रहंदो। हाणे कार्यक्रम में अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियलु ही गीतु।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अज असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाज़ुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं हे बासण सभु असां ते खिलनि था। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। मानीअ जो मोल कोन्हे, मानीअ जो मोल कोन्हे। बाज़ार खाधनि सां भरियल आहे, बस मोबाइल हुजे सॼो ॾींहुं, इते ई त ज़िंदगी रुकियल आहे। सुहिणा हुया उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जो दिलि आहे। सुहिणा हुआ उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमा, सीरो खाइण जी दिलि आहे। हू ॾींहुं विया उॾामी, पेट सभिनी जो भरियल आहे। साईं जी मेहर हुजे, बाक़ी त सभु ॼण वियल आहे। कंहिंखे धीअनि जी चिंता, कंहिंखे धीअनि जी चिंता। को पुटनि सां रुठल आहे, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं। जीवन जॾहिं छलियल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। हिकड़ी हास्य रचना। एयरपोर्ट वारो मूंखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। भॼंदे टुकंदे टैक्सिन में वेही, ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए। पर पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। रेलगाॾी सुहिणी, माण्हू बि सुठा, कूली बि आहिनि, चांहि वारा बि मिठा। सामान बि गॾु आ, खाधो बि गॾु आ। हर को माण्हू रेल में मौज थो मनाए, पर एयरपोर्ट वारनि खे माण्हू नथो भाए। घर सां वैब चैक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चैक इन। वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चेकिंग। वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चेकिंग। पैसेंजर वीचारो चेकिन जे चकर में, कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओं न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। अड़े कुझु त नओं सेखारियो, पाण खे सुधारियो। अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त डिजी डिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था। सामान जो सिस्टम, बेल्टन जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए। पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती

0: सबनी का आखिर में इठलाए वेठी मुंजा घरवारा घूरन मुखेता को भी पंजा सूर बला कहें के बुधाए एयरपोर्ट वारन के पैसेंजर न थो भाई। मुझे अगली रचना असांजा सभी कम ऑनलाइन हली व्या गीत जे रूप में पेश थी क्या असांजी मेहनत तुंजा कम वशीनन दे हली व्या असांजी मेहनत तुंजा कम मशीनन दे हली व्या असांजा सभी सुठा कम ऑनलाइन हली व्या ऑनलाइन हली व्या मानुन जो मोल घटजी व्या असांजा सभी सुठा कम ऑनलाइन हली व्या बिजली जा बिल भी पानी जा बिल भी बिजली जा बिल भी पानी जा बिल भी तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरजी व्या असांजा सभी सुठा कम ऑनलाइन हली व्या बोहारी असांजी रोबोट तो पाए कपड़ा मशीन में हर को सुकाए बासणन जा कम डिश वॉशर खणी व्या बासणन जा कम डिश वॉशर खणी व्या असांजा मेहनत जा कम हे मशीन दे व्या घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं कपड़ा लटा बूट शूट सब घेर बैठा आणियूं माओ जी जगह ते हाँ माओ जी जगह तो जोमैटो टोमैटो खणी व्या असांजा सभी सुठा कम ऑनलाइन हली व्या ड्राफ्टिंग ए चिट्ठियों एआई थो ठाए अरे डॉक्टरन जा कम भी एआई बुधाए तरह तरह जी टिकटू मोबाइल थो कराए तरह तरह जी टिकटू मोबाइल थो कराए लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वयो आ भाजू वठण जो आनंद फिटी वयो आ असांजा सभी सुठा कम ऑनलाइन हली व्या बार चवन पेरेंट्स वक्त था विनायो बार चवन पेरेंट्स वक्त था विनायो असा चवऊं तवा सेहत था गवायो अहड़ी ही बहसन में परिवार फिटी व्या असांजा सुपई सुठा कम ऑनलाइन हली व्या
1: मेहरबानी अनीता जी हिन सुहणी पेशकश लाए मुखे पूरो विश्वास आ त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउन खे सोचण लाए मजबूर जरूर कंदियूं दोस्तों तव्हां सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ही हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि इन टाणे समाज जे हर तबके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइण हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि केंद्र जहिड़ा कम अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवा वज ॾियारण जहिड़ा कम हारियुनि लाइ फसल बीमा किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं मेट्रो नेटवर्क वंदे भारत ट्रेनूं अटल सेतु चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिल आहे कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि दोस्तो इन्हीअ सां गॾु ई अॼु असां तव्हां खे ॼाण ॾियण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी जंहिंजो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नज़रिए कमज़ोर तबके ताईं सरकारी योजनाउनि जो फ़ाइदो हिकु सरियो पहुचाइण ही कार्यक्रम हिकु जतन आहे अल्पसंख्यकनि खे शिक्षा रोज़गार स्वास्थ्य समाजिक न्याय जहिड़े खेत्रनि में सशक्त ठाहिण जो इन्हीअ जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाउनि जीअं त छात्रवृति योजना समग्र शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत वग़ैरह जो कुल बजट जो हिकु हिसो अल्पसंख्यकनि ताईं पहुचाइण लाइ निर्धारित ज़रूर करे सघिजे साल 2006 खां हलंदड़ ही कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे पोइते रहिजल तबके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ही हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे ऐं दोस्तो इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधो

दोस्तों इन गीत सांगडी असांजे अज जे कार्यक्रम जो वक्त ब पूरो थो थे। उम्मीद आहे त तव्हां खे कार्यक्रम जरूर वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं जरूर पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾजबो, सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम

0: से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी, आलेख था कमल खसका, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 10:05 हुए हैं, पेश है सुगम संगीत के कार्यक्रम में महफिले गजल। तो आइए आगाज करते हैं गुलाम अली की आवाज में परवीन शाकिर की गजल से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका? गुड्डी की फीस का।
6: दिखा।
5: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
8: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सुगम संगीत में अब पेश खिदमत है बेगम अख्तर की आवाज में शकील बदायूनी का कलाम।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है दुनिया के

0: कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

महफिले गजल में अब रंग भरते हैं ठुमरी का राग देश की आगोश में। इस शास्त्रीय गजल को आवाज़ दी है मेहंदी हसन ने।

0: کی اس غزل کے ساتھ ہی محفل غزل کا یہ دل نشیں کارواں یہیں پڑاو ڈالتا ہے۔ یہ آکاش وانی کا ریوا کیندر ہے، 11 بجنے والے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں اپنا اگلا کاریکرم ہم آکاش وانی کے بھوپال کیندر سے ریلے کرتے ہیں۔
1: وشو کپ میں جیت درج کرتے ہوئے ہیتی کو 1-0 سے ہرا دیا۔ وہیں آج گروپ ای میں جرمنی کا سامنا کوراساو سے بھارتی سمے انوسار رات 10:30 بجے ہوگا۔ اور موسم وبھاگ نے پردیش میں 15 سے 18 جون کے بیچ مانسون کے پرویش کی سمبھاونا جتائی ہے۔ آپ سن رہے تھے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔
2: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं। हेलो।
4: हाँ सर जी, नमस्ते।
3: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ सर, ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
3: स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो ध्रुवराम साहू जी, क्या करते हैं आप?
4: सर अभी तो खेती बाड़ी काम चालू है सर।
3: क्या बो दिया अभी खेती में?
4: बुआई नहीं की है सर, अभी तैयारी है
3: जी।
4: ग्रीष्मकालीन जुताई करवा दिए हैं
3: जी।
4: बस अब धान की थरा रखना है सर खरीद के लिए।
3: धान बोएंगे? कहाँ से हैं आप?
4: बालाघाट से सर।
3: अच्छा, हाँ बालाघाट में तो धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है अच्छे से।
4: घाट का बीसा ब्लॉक है सर, वहाँ गाँव हमारा कनिया।
3: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
4: फिल्म का नाम है सर तहलका, और गीत के बोले दिल वालों का डोला दिलदार।
3: कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
4: सर अपन क्या किसानों को कहना चाहूंगा, जैविक खेती करें, ज्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें।
3: आपने जो अभी खेत की तैयारी कर रखी है, ये कैसे खेत हैं? जैविक हैं या फिर?
4: जैविक खेत है सर, जैविक अपन जो गोबर कंपोस्ट खाद है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं
3: जी।
4: जी सर, जो रासायनिक खाद है डीपी यूरिया वगैरह, उसको कम बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करें, गीत सुने। नमस्ते।
0: जी सर, नमस्ते। मैं ग्राम उलझान बोलिया, गेंदालाल परिहार।
1: हाँ गेंदालाल जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम उलझावन जिला सीहोर।
1: जी, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: सर, जानी दुश्मन क्यों गाना है?
1: जानी दुश्मन, कौन सा गाना?
0: जी, इसके गाना है सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई।
1: यही गाना सुनने की कोई खास वजह?
0: नहीं सर, मनोरंजन के लिए सुनते हैं गाना।
1: नहीं, मनोरंजन के लिए तो हम सुनते ही हैं। कई बार कुछ गानों के पीछे कुछ मैसेज होता है, हम उसके लिए भी सुनते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, इस तरह की चीज सुनना चाहते हैं, है ना। और करते क्या हैं आप गेंदालाल जी?
0: शहर में सिलाई काम है।
1: सिलाई का काम है, और सिलाई का काम करते करते आप गीतों का आनंद भी लेते रहते हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं हम तो, है ना।
0: चलता रहता है मोबाइल
1: बिल्कुल
0: पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो
0: बिल्कुल
1: ठीक है, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो सर।
0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, हम सतना से बोल रहे हैं।
0: अपना नाम बताएंगे?
1: रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना हमको वो वाला सुनना है सर।
0: कौन सा?
1: अब्दुल्ला का।
0: अब्दुल्ला कौन सा गीत?
1: खुदा तेरे हर है खुदा वाला गाना।
0: ए खुदा तेरा हर फैसला,
1: हर फैसला मंजूर है।
0: बहुत बढ़िया गीत है ये। ये गीत सुनने की कोई खास वजह है?
1: सर खास वजह नहीं, पुराने सुनने वाले हैं 40 साल।
0: जी जी जी, ये मैसेज है इस गाने में क्योंकि
1: बचपन में उनके जब रेडियो की दुकान थी छोटा सा लेके घूमते रहते थे।
0: रेडियो चीज ही ऐसी है, देखिए क्या होता है कि रेडियो सुनने से हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं। हमारे काम का भी हर्ज कोई नहीं होता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी,
1: जी सर
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत धन्यवाद।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कौन सर बोल रहे हैं सर आप?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपसे पहले बात हो चुकी है एक बार मेरी।
1: दिनेश भैया आपसे ही बातचीत हुई थी हमें, तो सर जो गर्व फिल्म को सुनना चाहते हैं हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: करते क्या हैं आप बेटा सिंह जी?
1: जी सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और किराने की दुकान जो भी है जो बंद रही है तो उसको खोलने के लिए क्या किया हमने।
0: तो चलिए मतलब खेती किसानी में अभी क्या बोया है आपने खेत में?
1: अभी तो सर जो भी धान की जो भी है ना वो बुवाई चालू किए हैं और उसके बाद में थोड़ा बारिश हो जाएगी तो उसका लगवाई चालू कर देंगे।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट।

0: हेलो
1: फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
0: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी ले बोल रहा हूँ सर।
1: सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास?
0: हाँ, तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ी ले।
1: वाड़ी ले, तो कब बात हुई थी, इसके पहले कब फोन लगाया था आपने?
0: जी सर, आज 10 दिन हो गए।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कॉल हम आप लोगों के नहीं आते हैं, अब 8-10 दिन बाद ही आप लोग लगाते हैं।
0: तो 8-10 दिन बाद कॉल लगाया सर, वो जो नियम का पालन कर रहे हैं।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या सुनना चाहेंगे देवीदास जी आज?
0: बता रहा हूँ
1: जी,
0: गायकर
1: के
0: गीत के बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
1: अच्छा चलता हूँ दुआओं में
0: याद रखना।
1: अच्छा, यही गाना सुनने की कोई खास वजह है, कुछ मैसेज है, किसी को कहना चाह रहे हैं?
0: अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है।
1: आवाज अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है, निश्चित ही गाना बहुत बहुत सुंदर है। तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए। अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: ठीक है महर्षि जी, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मेरी जंग फिल्म का।
0: कहाँ से है पहले ये बताइए ना।
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: गीत के बोल बताएंगे?
1: हर कदम एक नई जंग है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आप समझती है ऐसा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं लड़का हूँ।
0: अच्छा आप लड़का है, तो महर्षि आपका नाम है ना? तो क्या करते हैं महर्षि जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं कौन सी क्लास में?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में, तो सिक्स क्लास में। तो जिंदगी एक जंग है कैसे मानते हैं आप?
1: जिंदगी हर कदम एक जंग है, नई जंग है।
0: अच्छा आपको अच्छा लगता है गाना, है ना?
1: हाँ।
0: ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। और कौन कौन है आपके घर में?
1: पापा मम्मी भैया बहन।
0: अच्छा पापा क्या करते हैं आपके?
1: दुकान है किराने की।
0: और आप सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, और बाकी जो बहन है और भैया है वो क्या करते हैं?
1: भैया की जनरल स्टोर है।
0: भैया की जनरल? अच्छा भैया बड़े हैं आपसे?
1: हाँ।
0: और जो दीदी है?
1: दीदी पढ़ती है।
0: कौन सी क्लास में?
1: एमएससी कर रही है।
0: एमएससी कर रही है, मतलब आप सबसे छोटे हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा, और मेरी जंग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गीत का आनंद लीजिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाते हैं।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राजूलाल मेहर गांव बिलवाड़ा जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं आप, तो क्या करते हैं आप राजूलाल मेहर जी?
1: वैसे मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान भी बनाता हूँ और अच्छा। खेती बाड़ी भी करता हूँ।
0: जब आपके पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता होगा उस टाइम में आप कारीगरी का काम करते होंगे?
1: हाँ हाँ।
0: तो कारीगरी में क्या कारीगरी करते हैं आप?
1: मकान बनाने का।
0: मकान में कुछ ऐसा स्पेशल राजस्थान की बड़ी क्या है कि कुछ कलाकृतियों में बड़ी विशेषज्ञता है, तो आप किस तरीके से मकान बनाते हैं, सामान्य या कुछ स्पेशल?
1: सामान्य बना देते थे हम तो, जैसे हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन की खाने हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत फेमस है झालावाड़ की।
0: जी जी,
1: कोटा स्टोन की फैन।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे राजूलाल जी आप?
1: तो मुझे सुना है इंतहा हो गई इंतजार की।
0: इंतहा हो गई इंतजार की
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: शायद शराबी का।

0: जी, इसी गीत को सुनने की कोई खास वजह?
1: और वैसे फिल्म देखी थी मैंने, यार एक बार और सुन ले।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार आपने सुनने की इच्छा की है तो सुना रहे हैं आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते। अब बताइए।
0: नमस्ते, मैं जगदीश चौहान फिल्टर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है।
1: कौन सा?
0: राजा और रंग का। माँ तू कितनी अच्छी है।
1: राजा और रंग का?
0: राजा और रंग का।
1: माँ तू कितनी अच्छी है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत सुनने की कोई खास वजह है? राजा और रंग फिल्म का माँ तू गीत तो बहुत ही अच्छा है ना?
0: हाँ,
1: तो
0: माँ
1: क्यों?
0: से बहुत प्यार करते हैं सर।
1: माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ भी आपसे निश्चित ही बहुत प्यार करती होंगी।
0: जी, बहुत चाहती मेरी माँ भी में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि माँ का जो प्यार होता है ना,
0: जी
1: वो शायद दुनिया में सबसे अलग होता है। एक निस्वार्थ प्रेम
0: है।
1: होता है, और इसीलिए हर बच्चा, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो, वो माँ से इसीलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम मिलता है उसको वहां पर।
0: सही बात है, माँ से जुड़ा हुआ सब।
1: माँ से जुड़ा हुआ है और माँ से ही हम हैं। गीत आपने बहुत ही अच्छा पसंद किया है। गीत आ रहा है आपका, आपके रेडियो सेट पर। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी गीत के साथ फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के स्टार्टअप्स तथा नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पांडुलिपि संरक्षण अभियान के लिए पांडुलिपि धारकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 10,24,571 पांडुलिपियां होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद में इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय आरके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा और आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोतों, कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है, भोपाल से ये पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाली हैं कुसुम कीर, ज्योति वर्मा, अर्जुन वर्मा, अंश, परी, मिष्टी और लक्ष्मी। ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है SD बर्मन का। तो आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फकीरा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डॉक्टर संस्कृति कुल्हारे, वैदेही, सौम्या, रेवती, अंशिता और इनके मित्रों ने पत्र लिखा है कोलार रोड भोपाल से। गौतम नगर नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से हमें पत्र मिला है जूही, शुभी, श्रुति, भारती, दक्ष और मनीष वर्मा का। तो आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है येसुदास और हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस, मणि, पंजाब राव, निम्बालकर और संदीप पाटिल ये गीत सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें इन्होंने लिख भेजा है सारणी जिला बैतूल से। इसी गीत को सुनना चाह रही हैं सुमन, दिव्यानी, दिव्य, निक्की और इनके परिवार के सदस्य। ये पत्र जबलपुर से हमें मिला है। राग रोली और प्रशांत दुबे ने भोपाल से इस गीत को सुनना चाहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी के बोल है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। जीशान वारसी इस गीत को सुनना चाहते हैं बरेली से। अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब, नावेद, इन्होंने हमें मुरादाबाद से पत्र लिख भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बंडा सागर के श्रोता कृष्णा, जिया, मोना, रश्मि, संध्या, दीपिका और प्रियंका। औरंगाबाद के कुछ श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सदस्य, इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है औरंगाबाद से। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये नगमा।

0: सेवा केंद्र है। दिन के 12:25 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700-001-4242 पर।
1: 8700-001-4242।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 12:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अपना अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभु और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील सीमेंट लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब आगे।

0: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बाबू?
1: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
0: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
2: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: सरकार
2: ना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कई साई के पानी में।
0: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बाबू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
2: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
0: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार। ठाकुर साहब की जय हो,
2: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
0: क्यों भाई रामू बाबू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
2: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
0: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
0: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मारपीट के भगा देंगे।
0: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
2: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें।
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मारपीट कर भगा दे तो क्या होगा?
2: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
1: और इसी में तो कंपनी का
2: फायदा है सरकार।
0: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था।

0: तुम दोनों बहुत बहादुर हो, बुद्धिमान भी हो। ये लो अपनी बोतल, विलायती है। बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
1: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
2: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
1: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
2: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
1: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
2: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
1: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
2: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
1: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
2: ओह तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
1: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
2: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
1: क्या?
2: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
1: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
2: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
1: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
2: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूं।
1: अच्छा तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
2: जरूर।
1: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजे।
2: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
1: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
2: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ एक सुझाव और है मेरे पास।
1: सुझाव? अब कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
2: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
1: हाँ बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
2: हाँ चलो ये
1: चलो आप।
3: नारायणी काकी, राम राम काकी।
4: राम राम।
3: कहाँ से आ रही हो?
4: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
3: काकी क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
4: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
3: लेकिन काकी तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
4: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां तो नहीं मिली, लेकिन हाँ यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
3: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
4: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
3: क्या?

0: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
1: अरे वाह वाह वाह, एक पैग और भाई वाह, पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर, हड़ताल करे मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर, और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
0: धीरे बोल धीरे कालू, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
1: अरे बलबीर भाई, तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
0: हाँ।
1: और मैं
0: सेक्रेटरी।
1: शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
0: लेकिन कालू, डरना सीख, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर, लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
1: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो, वो दलित नेता?
0: हाँ, बिल्कुल वही।
1: अरे छोड़ यार बलबीर, उस मच्छर से क्या डरना है?
0: अरे यार कालू, मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है।
1: ओह,
0: और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
1: यार बलबीर,
0: हाँ।
1: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो।
0: हाँ।
1: देख बलबीर, उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दूं।
0: अरे, हाँ। अरे कालू, मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, सो अलग।
1: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
0: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। सबका सब पैसा हमारे पास है।
1: अच्छा,
0: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
1: अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पैग और हो जाए।
0: अभी लो।

0: यशवंत बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम मेरे घर में? अब आओ अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ यशवंत बाबू, आपको

0: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अब समझ में क्यों आएगा, यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
1: देखो नारायणी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना है

0: तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
1: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
0: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
1: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
0: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
1: नारायणी,
0: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
0: बलबीर स्वामी और कालूराम।
1: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
2: भाई बाबू,
3: बोल रहा हूँ,
2: आज कल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
3: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं।
2: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
3: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
2: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
3: रामू, तूने कुछ सुना?
2: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
3: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
2: औरत? अरे क्या बात करता है।
3: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
2: लेकिन तुझे कैसे पता?
3: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
2: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
3: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
2: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
3: तूने बिल्कुल ठीक कहा।
2: तो चलो पेड़ पे,
3: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।
2: वो तो मैं कह रहा था।
4: कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
5: आवाज दो,
6: अमेर है।
5: आवाज दो,
6: अमेर है।
4: शांत भाइयों शांत, हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
7: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
4: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। शांत साथियों, शांत। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत।
8: चलो बलबीर, आओ कालूराम।
1: हाँ बताइए ठाकुर साहब, क्या फैसला हुआ है?
9: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
10: क्या, सिर्फ 60?
1: 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 ठाकुर साहब?
10: सिर्फ 60?
9: हाँ भाई, सिर्फ 60, इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
11: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।

0: भी संभव नहीं है।
1: क्यों?
0: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
2: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
0: हाँ, देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
3: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
2: नहीं हो सकता
0: तो ठीक है, करो हड़ताल, एक साल दो साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
3: क्या
1: है? ये चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
3: हाँ।
1: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा।
3: हाँ,
1: झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
3: आओ, चलो अनिल भाई,
2: चलो चलो यहाँ से।
3: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
2: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
4: यशवंत भाई, यशवंत भाई,
3: हाँ
4: जरा इधर तो आना।
3: अब क्या बात है लीचू?
4: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
3: क्या क्या कहा लीचू? क्या हुआ रामू? क्या?
5: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
2: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है,
5: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
2: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
5: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे।
2: हाँ?
5: ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
2: हाँ? हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते हैं।
5: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं?
2: अरे वो ही
5: भृगु की बहन।
2: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
5: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
2: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
5: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
2: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
5: अरे कैसे का क्या मतलब? मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
2: रामू रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गाली देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
5: मैं भी नहीं।
2: लेकिन उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
1: क्या हुआ
2: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो बसाने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
5: हिल रही है, शायद वो आ रही है।
2: अरे
5: दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम उस पर कूद पड़ेंगे।
2: हाँ,
6: जान बचा। चल रहे तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
7: अरे ये पत्थर कहाँ जाएगी ससुरी? ये क्या पत्थर मार दिया? मार से नहीं तो भागेगी, फिर भागेगी। पकड़ पकड़, मैं तुझे पकड़ रखा है, दोनों हाथ पकड़ लिए इसके।
1: बहु माचिस तो जला रहे, देख तो सही है।
7: हाँ माचिस, मैं निकालता हूँ, ये निकाली माचिस।
1: नाइनी तू? भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
7: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो, ऊपर पोटली, देख इसमें क्या है, देख क्या है, क्या पता?
1: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
7: सुन, पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे,
1: ले चल।
6: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मेरे पास भी पैसे वापस कर।
1: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल।
6: सुना नहीं, जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
1: चल यहां से आगे बढ़। चल
2: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
6: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की?
7: अब
6: नहीं की ना, अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
7: चुप रह,
6: मेरे पैसे चुप। सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
7: अरे नहीं देते, अरे कर देंगे तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में सती रहेगी।
1: समझ ले,
6: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाऊ, तुझे क्या? मैं कहती हूँ लौटा मेरे पैसे।
7: सवाल
1: लड़ाई शरीर बेच।
8: कौन है रात के इस अंधेरे में?
1: भैया भाग ले, भाग ले,
8: देखो तो सही।
1: बाबू भाग ले।
8: हैं नारायणी, तुम इस वक्त?
9: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा भारत के स्टार्टअप्स और नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में 150 जगहों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में एक संवाद में उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय RAK कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच होगा। और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
9: इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की महिला सभा अंक में शामिल है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, गीत संगीत और खाना खजाना में आम पापड़ और करारी कुल्फी की विधि। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं रक्तदान महादान। रक्त मानव जीवन का आधार है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों, कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। विज्ञान ने आज अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन रक्त का कृत्रिम निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए रक्त की आवश्यकता केवल मानव द्वारा किए गए रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। बहनों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। सखियों, इस विषय पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में शरीर उस रक्त की भरपाई कर लेता है। रक्तदान करने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रक्तदान करके हम यह पुण्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहनों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का अनमोल खजाना अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाए हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संघर्ष के कारण ही आज हम एक सुरक्षित और सुखद जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दुर्भाग्यवश आज के बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक बुजुर्ग उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कुछ बुजुर्गों को परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और

और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज अपनी जड़ों से कटने लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है वे भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे, इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पर बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का मान करें। जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है।

बहनों चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने प्यारे परिवार की। परिवार जीवन की वह पाठशाला है जहां प्रेम, त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, विश्वास और सहयोग का आधार है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा पाता है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता हमें अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की अनमोल सीख देते हैं। परिवार के बीच रहकर हम दूसरों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखते हैं। बहनों आज जब अनेक लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं तब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भेजते हैं, उसे हम प्रेषण कहते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इन पैसों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हालांकि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है लेकिन परिवार का वास्तविक आधार केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय समय पर साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तकनीक के इस युग में दूर रहकर भी परिवार के साथ जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहनों परिवार जीवन का आधार है, खुशियों का सुंदर संसार है, तो कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, रिश्तों को सहेजें, पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और प्रेम, सम्मान तथा सहयोग से भरे एक सुखी परिवार का निर्माण करें, क्योंकि परिवार के संग ही जीवन जीने की कला पूर्ण होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सखियों अब कुछ बात स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के साथ हम उसकी बात करेंगे जिस पर आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा रेडियो। रेडियो सुनिए, साइकिल चलाइए और पेड़ लगाइए। एक ऐसा संदेश है जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण तीनों के महत्व को एक साथ समझाता है। यदि हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि समाज और प्रकृति को भी इसका लाभ मिलेगा। बहनों रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, सूचना और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। रेडियो के माध्यम से हमें समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और विभिन्न सामाजिक विषयों पर उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। रेडियो सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है और हम देश दुनिया की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। सखियों हमने बात की रेडियो की, अब बात करते हैं साइकिल। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसके साथ ही साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल वाहन भी है क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को संतुलित रखते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम
एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सखियों, रेडियो हमें जागरूक बनाता है, साइकिल हमें स्वस्थ बनाती है और पेड़ पौधे हमारी धरती को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी है कि इन तीनों बातों पे हम अमल करें।

सखियों बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। गर्मी के मौसम में आता है फलों का राजा आम। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आम पापड़ बनाने की विधि। तो नोट कीजिए आम पापड़ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए पके हुए आम 1 किलो, चीनी 200 से 250 ग्राम, काला नमक आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हमें घी चाहिए थाली या ट्रे को चिकना करने के लिए। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छे से धोकर उन्हें आप छील लें और उनका पल्प निकाल लें। अब इस पल्प को मिक्सर में एकदम चिकना पीसकर तैयार कर लें और अब एक भारी तले की कढ़ाई में आम का पल्प डालें और मध्यम आंच पर पकाना शुरू करें। अब आप इसमें चीनी मिला लें। लगातार मिश्रण को चलाती रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें आप काला नमक और इलायची पाउडर मिला लें। लगभग 15-20 मिनट पकाने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और अब एक बड़ी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगा लें, उसको चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में पतली और एक समान परत में फैला लें। इसको आप 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं। रात में इसको अंदर रख दें। पूरी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ को मन चाहे आकार में काट लें या रोल बना लें। लीजिए खट्टा मीठा आम पापड़ बनकर तैयार है। यह आम का स्वाद लंबे समय तक संजो कर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सखियों ये तो बात हुई आम पापड़ की।

अब चलते हैं गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने की। जी हाँ, गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने का मजा ही अलग होता है। यह कुल्फी बाजार जैसी गाढ़ी मलाईदार और स्वादिष्ट बनती है। तो नोट कीजिए, कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, मलाई आधा कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, कटे हुए पिस्ता 2 चम्मच। कुल्फी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबाल लें। दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग आधा होने तक पकाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिला लें और साथ ही चीनी डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर मलाई, इलायची पाउडर और साथ ही कटे हुए पिस्ता भी डाल दें। अब गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब कुल्फी के सांचों में इस मिश्रण को भर दें। 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, स्वाद में लाजवाब मलाईदार और करारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप बहनों, इन गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
6: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की ये प्रस्तुति। कलाकार हैं प्रकाश चंद झा और साथी।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुने ये दादरा। कलाकार एक बार फिर प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

0: घनश्याम वासवानी की गाई हुई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
5: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
4: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के

0: तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय

0: की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
4: बच्चों जय हिंद।
5: जय हिंद।
4: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज 14 जून है, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हमारे जीवन में रक्त यानी खून कितना महत्वपूर्ण होता है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत हो, तब रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इस दिन यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि हम उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दे सके जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। हालांकि आप बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही तो कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना? बच्चों कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ नए दोस्तों से, लेकिन उसके पहले क्यों ना सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: गीत सुन लिया? बच्चों, गीत के पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नए दोस्तों से मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते दीदी, मेरा नाम महती तन्मय वैष्णव है और मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर प्रथम पाली में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पता है दीदी, अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है।
0: अरे वाह, अभी भी आपका समर वेकेशन चल रहा है। तो महती, ये बताओ कि स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं आपके?
1: हमारी स्कूल वेकेशन के बाद 22 जून से खुलेगी दीदी।
0: अच्छा, 22 जून से आपके स्कूल शुरू होने वाले हैं। ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, कुछ नया सीखा आपने?
1: दीदी, वैसे छुट्टियों में कुछ नया तो नहीं सीखा, परंतु मुझे लिखने की जो रुचि है उसमें थोड़ा विकास करके कुछ नई कविताएं जरूर लिखी है। और तो और दीदी, इन छुट्टियों में मैंने पहली बार छोटे छोटे गद्य लिखने से एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्री वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर एक कहानी लिखी।
0: क्या बात है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर आपने कहानी लिखी है, तो हमारे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ बताओ महती।
1: जी दीदी, इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन त्रेता युग का। इसमें मैंने घटनाक्रम पूर्णतः श्री वाल्मीकि रामायण से लिया है, पर अपनी इमेजिनेशन का भी यूज किया है। इसके माध्यम से मैंने श्री राम जी तथा उनके तीनों अनुजों के एक दूसरे के प्रति अधिक भ्रातृ प्रेम के लिए मेरी श्रद्धा को शब्द दिए हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन की विधि का भी इस कहानी में मैंने बड़ा क्रिएटिव यूज किया है। जैसे जब जब भी भाइयों पर संकट आता तो उनको अपने रक्षा सूत्र के ढीले पड़ जाने से मानो एक आभास हो जाता। बाल्यावस्था, गुरुकुल के दिन, विवाह के पश्चात वनवास, युद्ध, अयोध्या पुनरागमन, देवी सीता परित्याग व भूमि प्रवेश और अंत में भाइयों की सरयू जल समाधि, इन सब में मैंने उन चारों भाइयों तथा रक्षाबंधन को मुख्य विषय बनाकर यह कहानी लिखी है।
0: क्या बात है महती, वैसे सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंतजार होगा आपकी इस कहानी का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने गए थे या नहीं, या फिर बस कविताओं को, कहानी को लिखने में ही समय बिताया?
1: हाँ दीदी, छुट्टियों में मैं मेरे नाना नानी के घर गई थी। वहाँ हम सब ने खूब मजे किए। और अब जब स्कूल शुरू होने वाला है तो 10th क्लास में मेहनत करने के लिए एनर्जी पूरी फुल है। मेरा मानना है कि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को प्रेशर और डर के साथ नहीं, पर फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आखिर बोर्ड्स एक वार्षिक परीक्षा ही तो है। मुझे 10वीं कक्षा में आने पर कैसा महसूस हो रहा है, मैंने उस पर एक कविता लिखी है। क्या मैं आपको वो सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती हूँ महती। अब आप 10वीं में पहुंच गई हो, नई नई क्लास है, नया सब कुछ है, बोर्ड्स की परीक्षाएं हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे अक्सर 10वीं की बोर्ड्स परीक्षाओं से डर जाते हैं। लेकिन आपने उसके ऊपर कविता लिखी है, तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, सुनाओ जरा।
1: इस कविता का शीर्षक है देखो अब आगे 10वीं में। यह कविता कुछ इस प्रकार है। छोड़ दिया जब जन्म स्थली को और पहुंची अपनी कर्म स्थली को, थी मैं केवल पहली में, देखो अब आगे 10वीं में। जन्मी केवल 15 वर्ष विगत हूँ, तौर तरीकों से बस थोड़ी ही अवगत हूँ। छिपा है बचपना अभी भी मन में, देखो अब आगे 10वीं में। कोमल थे जो झुंझुना थामने वाले हाथ, कठोर बने वही कलम चलाने वाले हाथ। कहां 10 माह की नवजात थी मैं माँ की गोद में, देखो अब आगे 10वीं में। काल चक्र से ज्यों ज्यों आयु मेरी बढ़ती गई, 10वीं के भैया दीदी प्रति

0: वालों से दिखने वालों की हो श्रेणी में, देखो अब आगे दसवीं में। कहानियों की दुनिया और चित्र बड़े चित भावन से सम्मुख विविध विषयों के लगने लगे हैं वामन से। हुई गजब की वृद्धि मेरे मन मस्तिष्क में, देखो अब आगे दसवीं में। आते ही बज गया है परिणाम की आकांक्षाओं का डंका, हो जाती है मन में मेरे कभी घनी सी शंका। पर डरना क्या जब मेहनत निश्चय और अपनों का साथ है मेरे जीवन में, देखो अब आ गई दसवीं में। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी महती, और हम सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो दसवीं का बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के दिलो दिमाग पर, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ दसवीं कक्षा में प्रवेश कर रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी जिज्ञासा है, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, तो तालियां तो बनती है ना। महती कविता तो आपने बहुत अच्छी लिखी है और सुनाई भी बहुत ही बढ़िया अंदाज में है। अब हमें ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में समर असाइनमेंट मिले थे आपको?
0: जी बिल्कुल दीदी, समर असाइनमेंट्स तो मिले ही थे और मैंने कंप्लीट कर लिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे भी कर लिए। बहुत अच्छा लगा महती आपसे बात करके और आपकी कविताओं को सुनकर। अब मिलते हैं एक और हमारे नन्हे सितारे से, तो अपना नाम बताइए।
2: दीदी मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: आशुतोष, तो आशुतोष आपके स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं?
2: दीदी मेरे स्कूल 16 जून को स्टार्ट होने वाले हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताओ आशुतोष, आपको इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ असाइनमेंट मिले या नहीं?
2: दीदी मुझे इन गर्मी की छुट्टी में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले थे और मैंने अपना दिमाग लगा के स्टार्टिंग में ही सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जिससे मैं बाकी पूरी गर्मी की छुट्टी में आराम से रह सकूं, खेल सकूं।
1: तो असाइनमेंट ही पूरा करते रहे या कहीं बाहर घूमने भी गए थे आशुतोष?
2: दीदी इन गर्मी की छुट्टी में हम बाहर घूमने गए थे और मुझे बहुत मजा आया और मैंने तो डांस भी सीखा है।
1: क्या बात है, डांस भी सीखा? भाई वो तो हमें देखना ही होगा, मगर पहले ये बताओ आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हो?
2: दीदी मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो हम सभी बच्चों की मन के भाव बताती है।
1: सुनाओ।
2: गर्मी की छुट्टियां बीत गईं, मस्ती वाली घड़ियां बीत गईं, नानी का घर आमों का स्वाद अब बन गए हैं मीठी याद। सुबह सुबह अब उठना होगा, स्कूल का बस्ता उठाना होगा, दोस्तों से फिर मिलना है, नई कक्षा में खेलना है। थोड़ी खुशी थोड़ा है गम, छुट्टियों की यादें हैं संग, खेल कूद अब कम हो जाएंगे, होमवर्क फिर से आ जाएंगे, नई किताबें नए सपने सीखेंगे हम अब कितने अपने, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के दीपक फिर जलेंगे। छुट्टियों को कहे अलविदा, स्कूल को कहे नमस्कार, खुश होकर हम कदम बढ़ाएं, उज्जवल हो अपना संसार।
1: कविता तो आपने सुनाई आशुतोष, मगर ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुलने से आप थोड़े कम खुश हैं, तो खुशी हो रही है या नहीं आपको?
2: दीदी अच्छा तो लग रहा है थोड़ा कि अब नए वापस से दोस्त मिलेंगे और नए दोस्त भी बनेंगे और पुराने दोस्त वापस मिलेंगे जो 2 महीने से नहीं मिले थे, पर बुरा भी लग रहा है कि अब लेट उठने को नहीं मिलेगा, स्कूल वापस स्टार्ट होंगे तो वापस सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे और फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, इसलिए मिली जुली सी फीलिंग्स है। अच्छा भी लग रहा है पर ज्यादा बुरा लग रहा है, और मेरे हिसाब से सबको ही बुरा लगता होगा जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती होंगी।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गर्मी की छुट्टियां जैसे ही खत्म होती है ना, तो सारे बच्चों को बुरा लगता है। खुशी तो होती है कि हम फिर से वापस स्कूल जाएंगे, अपने पुराने नए दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से दादी नानी का घर घूमना, देर तक सोना, ये सब कुछ हमें याद आता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जो है वो चलने का नाम है और समय जो है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हमें भी समय के साथ ही चलना पड़ता है। तो अच्छा है कि नया सत्र फिर से शुरू होने वाला है, ताकि आप अगली कक्षा में जल्दी से पहुंचे, जल्दी जल्दी परीक्षाएं दे और फिर अगली कक्षा में पहुंचे, है ना? तो ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं नई नई कक्षाओं में पहुंचने के लिए और फिर से स्कूल शुरू होने के लिए। अभी यहां पर थोड़ी देर रुकते हैं, दोस्तों से मिलेंगे, मगर क्यों ना पहले सुन लेते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: अच्छा बच्चों, अब हमारे साथ है एक और प्यारी सी दोस्त, तो चलो उनका नाम जानते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति चौहान है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो प्रकृति ये बताओ आज क्या बताने वाली हो दोस्तों को?
1: आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 जून को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन के समय लोगों को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय में रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रक्त यानी ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वेच्छा से दान कर सकता है। इसलिए रक्तदान करने वाले लोग वास्तव में किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और रक्तदाताओं का सम्मान करना है। इस दिन उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं। दोस्तों हम बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक निश्चित आयु और स्वास्थ्य संबंधी नियम होते हैं, लेकिन हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। सोचिए यदि किसी अस्पताल में कोई मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा हो और समय पर उसे रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। उस मरीज और उसके परिवार के लिए वह रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। रक्तदान के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान सुरक्षित माना जाता है और कुछ समय बाद शरीर फिर से आवश्यक रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। दोस्तों हमें बचपन से ही दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित करनी चाहिए। मदद केवल पैसे से नहीं होती बल्कि जागरूकता फैलाकर और अच्छे संदेश देकर भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हमेशा मानवता, सेवा और सहयोग की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे और जब हम बड़े होंगे तब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई दोस्तों कि जब हम किसी को रक्तदान करते हैं ना, तो न केवल जीवन दान मिलता है बल्कि हमें भी अच्छा करने की सीख मिलती है, अच्छा करने की खुशी मिलती है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम जब आप करते हैं या किसी को और को प्रेरित करते हैं

0: तो वो काम आपके जीवन को हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई। अब हमारे साथ एक और प्यारी सी नन्ही सी दोस्त है, तो चलो उनसे भी कुछ सुन ले।
1: मेरा नाम है तनिशी भावसार और मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। दीदी मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ।
0: अरे वाह तनिशी, आप दूसरी कक्षा में पढ़ती हो और हमें एक कविता सुनाने वाली हो, तो सुनाओ कविता।
1: मेरा बंदर मस्त कलंदर, पल में बाहर पल में अंदर, मेरा घोड़ा बड़ा निगोड़ा, कभी न पीता पानी थोड़ा, मेरी बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं, दूध मलाई चट कर जाऊं, मेरा बाजा करे तगाजा, पर लिख लो तो बनोगे राजा, मेरा तोता पंख भिगोता, राम राम रट के खुश होता, मेरा हाथी सबका साथी, लेकिन उसकी सूंड डराती, मेरी गुड़िया जादू की पुड़िया, रूप बदल बन जाती गुड़िया, मेरा डामी रंग बदामी, पाव उठाकर करे सलामी। थैंक यू।
0: बहुत अच्छी कविता हमें तनिशी ने सुनाई, बहुत प्यारी कविता।
2: मेरा नाम समृद्धि नागर है, मैं कक्षा 3rd में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा समृद्धि, मुझे ये बताओ आपके स्कूल कब से खुलने वाले हैं?
2: मेरे स्कूल 16 जून से शुरू होने वाले हैं।
0: और ये बताओ इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या सीखा?
2: जी हाँ, मैं छुट्टियों में डांस सीखे हैं।
0: अच्छा आपने डांस सीखा है, और जो गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाला समर असाइनमेंट होता है आपने पूरा कर लिया?
2: जी हाँ, मैंने अपना असाइनमेंट पूरे कर लिए है।
0: तो इन छुट्टियों में मजे आए आपको?
2: जी हाँ, मुझे छुट्टियों में बहुत बहुत ज्यादा मजे आए।
0: तो स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो खुशी है या नहीं आपको?
2: जी हाँ, मेरे स्कूल शुरू होने वाले, उस चीज की मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है।
0: खुशी है, खुशी होनी चाहिए, है ना? तो क्या सुनाओगी आज?
2: मैंने छुट्टियों में कविता सीखी है,
0: तो सुनाओ हमें।
2: ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साए साए, मुन्नी को चीर कर चर गई है पैर पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बस पर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। थैंक यू।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी कविता हमें समृद्धि ने सुनाई। अब आगे आप दोस्तों को इंतजार होगा गीत का, तो चलो सुनवा देती हूँ आपको एक और बहुत प्यार।

0: बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जून का महीना चल रहा है, गर्मी अभी भी अपनी पूरी जोरों पर है और हम सब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि इस गर्मी में पेड़ पौधों और पक्षियों का क्या हाल होता होगा? सोचा है बच्चों, जिस तरह से हमें ठंडी हवा, छांव और पानी की जरूरत होती है ना, उसी तरह से प्रकृति को भी हमारी थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम इस बार बारिश आने से पहले हम एक संकल्प लें एक पौधा लगाने का, और साथ ही साथ अपने घर की छत, बालकनी या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का। बच्चों याद रखिए, एक पौधा धरती को हरा भरा बनाता है। तो बच्चों, बारिश से पहले पौधा रोपण की तैयारी करनी है, आप अपने स्तर पर कहीं ना कहीं अपने घर के आंगन में या फिर अपने पास के बगीचे में छोटे छोटे पौधे रोपित करिए, ताकि जब बारिश का पानी उन पर गिरे ना, तो वो पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक दिन बड़े होकर छांव दे, फल दे और खूब सारी बारिश दे। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा दीदी का टाटा, बाय बाय और जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। 37वीं किस्त के रूप में 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले देश भर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के शुरुआती मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो, उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से।

और इस बीच आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। और इसके पश्चात पुनः आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक आप सुन सकते हैं। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। DTH पर इस बीच प्रसारण जारी रहेगा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा, झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू चलो यहाँ से, चलो
1: आप अनिल भाई
0: चलो चलो यहाँ से।
2: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
3: अरे यशवंत तू अभी नरम बांस है, अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
1: यशवंत भाई, यशवंत भाई
2: हाँ
1: जरा इधर तो आना।
2: अब क्या बात है लीचू?
1: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बात, ये लोग
2: क्या
1: क्या कहा लीचू?

0: क्या हुआ रामू क्या?
1: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया है। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
0: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।
1: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
0: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
1: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
0: हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते हैं।
1: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं? अरे वो ही भृगु की बहन।
0: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
1: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
0: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
1: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
0: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
1: अरे कैसे का क्या मतलब?

0: पुलिस किसी चीज नहीं देने।
1: चुप हो जा,
0: अरे देखा नहीं चार और बंदूकधारी पुलिस बहरे पर है।
2: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
0: रामू रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गालियां देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
2: मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
0: लेकिन मैं उसे साई की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
1: क्या हुआ
0: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो गोसाने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है,
2: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं करना। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम उस पर कूद पड़ेंगे।
0: हाँ,

0: से जान बचा ली, तो मुझे भागना होगा नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
1: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
2: रामू, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो पोटली,
1: देख तो
2: देख इसमें क्या है, देख।
1: अरे
2: क्या है, क्या है बता?
1: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
2: सुन, पैसे जेब में डाले,
3: रोटी इसके हवाले कर दे,
1: ले चल।
0: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कितने मेरे पैसे वापस कर।
1: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है, चल।
0: सुना नहीं, जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
1: चल यहाँ से आगे बढ़, चल।
4: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
0: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की? नहीं की ना, अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुप जा, मेरे पैसे लौटा दे।
3: चुप रह,
0: मेरे पैसे, चुप। सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
4: अरे नहीं देते, अरे करते क्या, तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में चलती रहेगी।
1: समझ ले,
0: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाओ, तुझे क्या, मैं कहती हूँ लौटा मेरे
1: पैसे। शरीर
5: कौन है रात के इस अंधेरे में?
1: भैया भाग ले, भाग,
5: देखो तो सही।
1: बाबू भाग ले,
3: नारायणी तुम इस वक्त

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे

0: समीर झा।
1: संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जंग लगी तलवार धारावाहिक का 9वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपए के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं

विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है, यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: कर आएंगे।
1: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाएं करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने भोजन बनाने स्नान करने खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां तालाब झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही नदियों तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उस

0: संरक्षण हम करेंगे। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं कनक श्रीवास्तव।
1: दोस्तों, आइए हम आधुनिक परिवेश में योग का महत्व इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले हम योग क्या है इसको समझ लेते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़, अर्थात जुड़ना। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है योग। योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था, जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे। इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग आदि। मित्रों, अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई ना कोई दवा ले रहा है, क्योंकि जीवन शैली आज स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। खान पान जहरीला हो गया है। अनाज, सब्जी, फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है। यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है। अतः स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाएं और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एक आत्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तथा ये स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावाही दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एक तत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है, तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। उद्बोधन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने अपने सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग ना करें। यदि कोई पुराना रोग है, बीपी या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही ले जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए। शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें, तुरंत ना लें। शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
0: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता

का त्याग आवश्यक है। साथियों, संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता, समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण, सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी जो वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए गीत से। कालीघटा फिल्म के लिए इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतकार

तुमको मेरी कसम। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, नीति मोहन और अब्दुल शेख की आवाजें, श्वेता बोथरा की शब्द रचना और प्रतीक वालिया का संगीत।

अगला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज में है। प्रवीण भारद्वाज ने गीत लिखा है और रैन फिल्म के लिए इसे संगीत

कार्यक्रम का आखिरी गीत घातक फिल्म से अलका याग्निक, शंकर महादेवन और अनु मलिक की आवाज़ हैं। राहत इंदौरी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की गयी। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की। शब्द रचना गुलजार की है, संगीतकार AR रहमान।

अगला गीत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है। निदा फाजली ने गीत लिखा है और सुर फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है MM करीम ने।

हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गीत सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरूला की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फैज़ अनबर के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, विशाल ददलानी की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ प्रतिद्वंद्विताएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं बसती, वे करोड़ों दिलों की धड़कनों में धड़कती हैं। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो हर गेंद एक कहानी बन जाती है, हर रन एक उम्मीद और हर विकेट एक उत्सव। आज बर्मिंघम की धरती पर महिला T20 विश्व कप में भारत के अभियान का आगाज हो रहा है। वनडे विश्व विजेता भारत आत्मविश्वास की नई उड़ान के साथ मैदान में है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपने जज्बे जुनून से बड़ा उलटफेर करने का सपना लेकर आएगी। आसमान में तिरंगे की उम्मीदें हैं, मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला और रेडियो के इस सफर में आपके साथ क्रिकेट का सबसे रोमांचक कारवां। मैं हूं आपका होस्ट आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल।
5: Thank you so much, Anand, and a very warm good evening to all our listeners of Akashvani. We are back over here once again, bringing you the first game of the ongoing Women's World Cup 2026, the big one, India versus Pakistan. Joining me over here in the studio today are three very special guests. It's a pleasure to introduce you all to them, to all of you today. First of all, I would like to welcome over here with us former cricketer Vaishali Mathur. Namaskar, good evening.
6: Good evening.
5: और दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज हमें join कर रहे हैं former cricketer Colonel Bhup Raj Singh. Good evening, namaskar Colonel.
7: Hello, good evening.
5: And senior, should I say, sports journalist, writer, and also a person who very passionately covers and follows cricket and sports, Mona Parthasarthi ji. Good evening, Mona. Namaskar.
8: Namaskar. Thank you, Sakshi.
5: To quickly just start off the discussion, Vaishali, with you, I'll start. It feels good to have such a huge, or should I say, majority women representation today over here, because it's the Women's World Cup. But before we go over there, we are headed straight towards the toss.
9: Zealand internationals, I've got the skippers with me as well, Fatima Sana and Harmanpreet Kaur. Harman, I think you've got the coin.
10: Heads is the call. It's a tail.
8: We'll bat first.
9: Heads is the call. It has fallen your way. Well, you're very quick to say you're going to bat first. Why is that?
8: Well, I think it's a very good pitch to bat on, so we just thought let's bat and set decent total on the board.
9: First World Cup that you've come in as World Cup champions. I know it's a different format, but what does that do to a team? Does it sort of make you walk a little bit taller?
8: Well, I think we all are very excited. The last World Cup definitely given us a lot of confidence, and we just want to, you know, carry that confidence to this World Cup.
9: And the build-up has been quite immense, hasn't it? You beat Australia away, then you've come out to South Africa, then you're in England as well. Have you been pleased with the build-up?
8: Yes, definitely. We have break a lot of barriers, and now it's only about, you know, playing good cricket, and we are looking forward to that.
9: Okay, let's get into this team. You're going to bat first. You've had a little bit of tinkering in the batting lineup. Yastika's coming in, then Bharti's been in at different stages. Is one playing, both playing, or none at all?
8: Bharti's playing today, and Yastika did really well, but today we thought of going with the Bharti.
9: Okay, and it's going to be a tough pitch for your bowlers. What does that bowling unit look like?
8: We are going with three spinners and two medium pacers.
9: Here we go. All the best today, Harman. I know
8: Thank you. You'll entertain. Thank you.
9: Fatima, come on in. What would you have done if you had won the toss?
11: I think if we won the toss, we're going to bat first as well, because it looked like a batting track.
9: Okay, talk to us. It hasn't been the best build-up in terms of performances as a team, but your batting unit, you've had two centurions, you've hit the fastest 50 ever in the game as well. Do you feel as if the batting unit is looking good?
11: Yeah, I think as a team, we are doing great in the batting and the bowling as well. So we know we have a good bowling unit, and so we just need to improve in the batting side, so we are good to now.
9: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
11: Yeah, good.
9: Okay. How do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
11: Yeah, obviously it looks like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
9: Okay. Any key in or outs for you for the team?
11: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be
9: our. Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
11: Thank you.
9: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
5: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today, Ovi Vaishali.
6: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने।
5: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana but of course Harmanpreet Kaur, but just to carry that conversation forward very quickly, jo apne hum baat rakhi hai Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaya pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
7: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में। हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं, तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है। फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है, तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
4: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 टी20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मातजेब मारी है। कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया, जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई, क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
12: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस दैट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन, सो जनरली इफ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना, इफ शी गेट्स आउट अर्ली then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in

0: विकेट्स के ऊपर मेरे ख्याल से हम अगर बैटिंग फर्स्ट अभी हम कर रहे हैं, बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, तो अगर हम स्कोर 170 से ऊपर कर देते हैं तो इट बी ए वेरी चैलेंजिंग टोटल फॉर पाकिस्तान एंड वी शुड बी एबल टू बीट देम।
1: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
2: जी एंड आनंद, दिस इज आल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ साथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली आई विल कम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जब हम बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स। फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? ढाई सौ की उम्मीद लगा रहे हैं। जी वैशाली,
3: जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति वंदना जब उनके सामने नासरा संधू और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति वंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति वंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है, सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी। आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की, 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधु जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम 9 विकेट हैं। तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं। स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी? चूंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
4: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में। इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो शुरू से, पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है। ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट, तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर, रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा। और यहां पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहां बचना बहुत जरूरी होगा।
2: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Gupraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number 3 is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
0: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4 or 5 batsmen and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They will, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
2: Right. I'll just take a question with Vaishali also. आपके पास आऊंगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्वड, डू यू थिंक इट इज नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग?
3: आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो. एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती है. और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है. और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था, उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी.
1: जी बिल्कुल, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं, शेफाली वर्मा हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी और क्रांति गौड़. इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया. थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान. इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं. मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
4: देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है. हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था. अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है. रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर, व्हाई? तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है. और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में. तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है.
2: राइट, एंड वेलकम टू मोना. Just to take that question forward, yeah. because आप जवाब देना चाह रहे थे about how India. the cricket of both the countries has evolved and whether possibly India का cricket शायद ज़्यादा उच्च हो गया है compared to Pakistan का cricket.
4: साक्षी, आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों देश कहाँ ठहरते हैं महिला क्रिकेट में, ये आपका क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय टीम खासतौर पर WPL आने के बाद से, या फिर एक्सपोजर की हम बात करें तो लगातार खेलती आ रही है, और पाकिस्तान 2 साल में 1 या 2 श्रृंखलाएं खेला है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई.

फातिमा सना ने, लेकिन जो हार्ट टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है। और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए, भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का, और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं, तो बहुत ही फर्क है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज

0: साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे, वो काफी मायने रखता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: राइट,
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी। 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है इस वर्ल्ड कप में।
3: देखिए, श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है, एंड आपने WPL में भी अगर उनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, शी इज टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज टेकन, सो शी इज वेरी गुड। बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, she struggle कर रही है।
3: Yeah, she has just taken in one match 5 wickets. In rest of the matches, she is not that old दीप्ति शर्मा that we know her to be. पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी, एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। So these three spinners we are looking at, and Arundhati, the fast bowler, also she's done well. So our bowling is quite good as when we compare ourselves with Pakistan.
1: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawang of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, aapke paas aa jaati hai is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain, Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets. 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
2: Mona, is sawal ke jawab par aayenge, caller hamare saath jud gaye hain. Ji, swagat hai karyakram mein aapka. Ji, namaste. Ji, bataye kya batana chahte hain aap? Ji, shukriya. जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं। जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी।
0: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी है और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट, और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही है, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे वो कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं। तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
2: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती हैं।
4: अगर मैं भारती की बात करूं तो ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें, अगर कंपैरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है, और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं, लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका जिंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करे और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करे।
1: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल भूपराज एंड आस्क यू, डज इंडिया गो इन एज हैवी फेवरेट्स इन द गेम टुडे?
3: Oh yes, we are heavy favorites and I am hoping for a one-sided match.
1: One-sided.

0: एडेड वाओ मोना जी,
1: हैंड्स डाउन बिल्कुल इंडिया फेवरेट है। और जैसे हम बार बार बात करें कि इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं। काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शी कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे।
2: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
3: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वुमेन्स में बड़े आराम से जीत रहा है। तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार, एंड मेरे ख्याल से तो हम लोग अच्छा खेलेंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
4: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन हम लूट सकते हैं उतने रन हम लूटे, हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
2: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का ये सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: थैंक यू।
5: फर्स्ट बॉल 20।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकार ये अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और श्रियंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेटकीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबीन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ

0: शेफाली वर्मा कि उस गेंद को कट करेंगे और बहुत ही चतुराई के साथ वहां पर सादिया इकबाल ने भी गेंद की दिशा को लेग स्टंप की तरफ रखा और जैसे ही कट करने की कोशिश की गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर मुनीब अली ने कोई कोताही नहीं बरती, आसानी के साथ उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया और इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहे। पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर।
1: Jemima Rodrigues is the new batter and Sadia Iqbal misses her mark this time around, delivers this one down the leg side on a good length, too far for Jemima to make contact. Now this is an interesting one. Remember, recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander obviously. Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern-day cricket to counter the left-arm spinner. However, today India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Sadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length. Presses forward as Jemima Rodrigues and wards it off towards extra cover. End of the first over. 7-1.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: गरीब जानिए आधा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 129 की। काफ़ी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगे या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगे। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहाँ पर ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफ़ी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगली गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, बाई तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है।
1: And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
0: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई और निश्चित रूप से जेमिमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ पर फातिमा साना जरूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नज़दीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती उस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जेमिमा रॉड्रिक्स, अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है। शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनसे उम्मीद की

0: जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर, लेकिन स्टंप के आसपास कहीं भी गेंद नहीं थी और डाइव लगाते हुए जमीमा ने अपना इस मैच का पहला रन पूरा किया। भारत 9 एक विकेट के नुकसान पर।
1: थ्री थिंग्स हैपेंड देयर आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉल वेंट टू मिड ऑन वेयर आलिया रियाज फील्डेड इट।
2: श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे 7:21 से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: बड़ी बहू,
8: ये तुम्हारे ना।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
8: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
7: और ये
8: मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो क्या?
9: RBI कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक MSME इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं।
12: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
11: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
13: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई।

0: जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की, साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हित लाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
0: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतू में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जांच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, UAV तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसूद द्वारा आयोजित जन शिविर में

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
1: तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी हनका लालमन भाई के राम राम। सुनैया भैया बहनी, या शायद किसान भाई खेती किसानी के काम में व्यस्त था, जैसन कि खेत के जुताई, घर के छबाई, खादी कूड़ा के इंतजाम में लगे हैं। काहे से 15 जून से धान के रोपा हमार किसान भाई डारब शुरू कर दे था। यहीं से जौने खेते में रोपा डारे का है तो ओकर दुई बार निकाह से जुताई करा दी, जौने खरपतवार नष्ट हो जाए। अजौ चारा उजार खेत में है ओखा निकाह से साफ सफाई कैके खेत का तैयार कर ली, समय राहत खादी के व्यवस्था कर ली, जौने फिर खादी के नेता परेशान ना होए के पड़े, घर के छबाई करा ली, जौने बरसात में परेशान ना होए के पड़े। देखी जौने खेते में धान के रोपा लगवावे का है ओहू की जुताई कराई रही, काहे से कबो कबो पानी शुरुआती दौर में इतना गिर देता है कि खेत भर जाता, अजो जुताई कराई रहा तो खेत निकाह से सड़िया था, अजों खरपतवार रहा था ओ नष्ट हो जाता, फिर लेव भर के लगावे का रह जात है। देखवे में आवत है कि कुछ खेत ऐसा होता कि जो एक बेर की भर गए तो ओखर पानी खेते में हफ्तन भरा रह जात है, फिर सूखी जुताई नहीं हो पावत या यहीं से खेत के जुताई पहले से कराई रही, जौने परीखई का ना पड़े। बीज बिसाहत समय यह बात के ख्याल रखी कि बीज उन्नत किस्म के हों, 100% अंकुरण वाला हो, कितने समय के अंदर फसल पक के तैयार हुई यह बात के ख्याल रखाई का है। काहे से गरुहन धान के बुवाई वही खेत में करे चाही जौने खेत में सिंचाई के बड़ व्यवस्था हो, जौने जगह सिंचाई के बड़ व्यवस्था नहीं आए ता वह जगह में हल्कन धान की बुवाई करी, जौने समय राहत फसल तैयार हो जाए। सुनैया भैया बहनी, मने जीवन में कईक मेर के दान करत है, जैसा अन्नदान, स्वर्णदान, नेत्रदान, रक्तदान वगैरह। कुछ दान तो ऐसा होता जो कि अपने समाहित के अनुसार मन ही करत है, पर कुछ दान का समर्थ की जरूरत नहीं पड़ा था, इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ा थी। सुनैया भैया बहनी, आज वह 14 जून और अजवा के दिन विश्व रक्त दिवस मनावा जाता है। लोगन का रक्तदान के बारे में जा

जागरूक कीन जात है। काहे से अभिनव लोग रक्तदान करई कि से कतरा था। हमारे पड़ोसे माँ जियावन काका के लड़का की एक्सीडेंट हुईगा। अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा कहागा कि इनका रक्त की जरूरत ही पड़ी, यहीं से खून देव जरूरी है। जियावन काका अपने रिश्तेदारन का फोन कई के खून की जांच कराई के रक्त दे के बात करिन, पै को तैयार नहीं भे। को कुछ बहाना बनाए दिहीन तक कुछ जने कहीं कि खून दिए से कमजोरी आ जाती, यहीं से कहाँ व्यवस्था कैली हम खून न दे पाऊ। सगले रिश्तेदार हाथ खड़ा कर दिहीन। फिर उनका मित्र जब यह बात का जानिन तऊ तुरंत रक्त दे का तैयार हुई गए और उनके लड़किया की जान बच गए। भला बताई इतना रिश्तेदार रहे पर वक्त पड़े को साथ नहीं दिहीन। उनके मन मा अब अहिनाओं भ्रांति भरी है कि खून दिहे से कमजोरी आवत ही, पर ऐसन बात ही नहीं आए। खून दिहे से मनई का कौनों मेर के कमजोरी नहीं आवत ही आए, बलुक उतना खून शरीर मा पुण्य से बन जात है। अब अहिनाओं लोग जागरूक नहीं आही ता देखी या मेर के सोची मा बदलाव लावई का पड़ी। उनखर मित्र जानत रहे कि रक्तदान दिहे से मनई का कौनों मेर के समस्या नहीं आवत ही आई, यहीं से नऊ तुरंत खून दे का तैयार हो गए। काहे से ऊँ एक बारे में जागरूक रहें, ऐसन हर मनई का जागरूक हो चाही। काहे से हमारे रक्तदान करे से केहू के जीवन बच सकत है, यहीं से रक्तदान का महादान कहा गया है। तो समय समय में मनई का रक्तदान करे चाही। सुनइए भैया बहनी, रक्तदान तब होत है जब एक स्वस्थ मनई स्वेच्छा से अपन रक्त देत है। विकसित देश में अधिकांश रक्तदाता अवेतनिक स्वयंसेवक हो था, जो कि सामुदायिक आपूर्ति के नेता रक्तदान करा था। गरीब देशन में स्थापित आपूर्ति सीमित है। आमतौर में परिवार अकि मित्रन के नेता रक्त के जरूरत हो के कारण रक्तदाता रक्त दे था। कई दाता दान के रूप में रक्त दे था, जो कि लोगन का भुगतान कीन जात है। रक्तदाता का रक्तदान दिए के बाद आमतौर में दान स्थल से 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। काहे से सबसे अधिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया दान के दौरान आकि दान के तुरंत बाद होती, यहीं से खूनदाता का चाय आ बिस्कुट जैसन हलुक वस्तु खाए पिए का दे था। रक्तदाता कितनी बेर की दान दे सका था, एकर सटीक दर अलग अलग देशन में भिन्न भिन्न होती। जैसन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लाज्मा फेरिसिस दाता का एक सप्ताह में दुई बेर की दान करे के अनुमति है। सुनइए भैया बहनी, रक्तदान के निता शिविर के घाल आयोजन कीन जात है। यहीं से मनई का शिविर में जाए के स्वेच्छा से रक्तदान करे चाही। सरकार का इससे देखी ब्लड बैंक बनावा गया है, जो मने ये रक्तदान करा था ओका सुरक्षित रूप से ब्लड बैंक में रखा जात है। उनके बदले में उनका रक्त ब्लड बैंक में जमा करावे का पड़त है। यहीं से जब रक्त शिविर लागे तो मने बिना डेर भाई के साथ रक्तदान करे। हमारे अपना के रक्तदान किए से केहू के जान बच सका थी। फिर कहा जात है कि जागरूक मनई कौने काम का सोच समझ के करत है, और दूसरे मनईन का जागरूक कई के ऐसन काम के नेता उत्साह वर्धन करा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह दिन का रक्तदान दिवस के रूप में घोषित की वर्ष 2004 में स्थापित यह कार्यक्रम के उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाऊ है। यह दिवस कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस के याद में मनावा जाता है। लैंडस्टीनर का एबीओ रक्त समूह का खोजई के नेता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कीन का रक्त कौनो जरूरतमंद के जीवन बचावे के नेता अति आवश्यक होत है। एक यूनिट रक्तदान तीन मनईन के जीवन बचा सकत है, यहीं से हर स्वस्थ मनईन का रक्तदान करे चाहिए। कुछ मनईन मां जागरूकता ना हो के वजह से यह भ्रांति रहती कि रक्तदान किए से शरीर में रक्त की कमी हो जाती, पर रक्तदान
कि इस शरीर में कौनों मेर से कमजोरी नहीं आवत आए और रक्त के कमी नहीं हो या केवल अफवाह मात्र आए। रक्तदान करे वाले मनन के शरीर में नवा रक्त के संचार होते है। सुनैया भैया बहनी, सामाजिक संगठन बरिस में एक या दुई बेर रक्तदान शिविर लगाए के रक्तदान के आयोजन करा था। केहू मनई का यदि रक्तदान के जरूरत अचानक पड़ेगा ता अस्पताल जाए के वह मनई का रक्त दे था। रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के कहाव है कि वह मनई जऊ कि 16 से 60 साल के बीच हो या ओखर वजन 45 किलोग्राम से अधिका हो, जेका एचआईवी हेपेटाइटिस बी या सी जैसन बिरामी ना हो, वह रक्तदान कर सकत है। एक बेर की माँ 350 मिलीग्राम रक्त दिन जात है, ओखर पूर्ति शरीर में 24 घंटा के भीतर हो जाती और गुणवत्ता के पूर्ति 21 दिना के भीतर होती। जो मनई नियमित रक्तदान करा था उनका हृदय संबंधी बिरामी कम परेशान करा थी। एक ठे मुख्य बात यह होती कि हमारे खून के संरचना ऐसा होती कि ओमा समाहित रेड ब्लड सेल तीसरे महीना अपने आप आ जाती हैं। यहीं से कौनो स्वस्थ मनई 3 महीना में एक बेर की रक्तदान कर सका था। विश्व रक्तदाता दिवस मुखतौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 192 राज्य सदस्य द्वारा 2005 स्वास्थ्य सम्मेलन में यह आयोजन के घोषणा की गई, जेकर उद्देश्य रक्तदाता का यह बताऊ रहा कि रक्तदान सुरक्षित होए के साथ यह आवश्यक मनई में रक्त की पूर्ति कैके कौनो मनई के जीवन बचावे के उपहार देत है। इतने भर नहीं, सदस्यन के यह उद्देश्य रहा कि दुनिया भर में एक नेता सगले देश प्रेरित हों आ पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करा जो उन्हें स्वैच्छिक सुरक्षित आ अवैतनिक रक्तदान का बढ़ावा मिले। सुनिए भैया बहनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य 2020 तक सगले विश्व में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदातन के पर्याप्त मात्रा में रक्त के आपूर्ति का प्राप्त करके ओखा जरूरत मंद मनई तक पहुँचाऊ आए। आंकड़ा ये बतावा था कि केवल 62 देश में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाता पर्याप्त मात्रा में रक्त के आपूर्ति करत लागा, जबकि 40 देशों में अबहिनाओं रोगी या तो अपने परिवार के सदस्य आ कि कौनो ऐसा रक्तदाता पर निर्भर रहा था जो पैसा के दिए के बाद उनका रक्त के आपूर्ति होती। यहीं से स्वैच्छिक रक्तदान का प्रेरित कराई के नेता और ओके योगदान के सहायता कराए के नेता या दिन के मौजूद मनई जेखा रक्त की जरूरत है ओके नेता मनावा जात है। आइए अब सुन लीन जाए रामचरण वर्मा के गावा साक्षरता गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना

0: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए, हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सुनैया भैया बहनी, आई अब सुना जाए भेंट वार्ता, जेखर विषय है जागरूक किसान। वार्ताकार हाँ राज बहोर कुशवाहा, ऐसे बत कहाँ चलाइन ही गणेश भाई।
6: देखिए आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हाँ राज बहोर कुशवाहा जी, जे जागरूक किसान हाँ, ताज उन्हीं से देखी हम पंचे जनबही लैब काहे से के ऊँ जऊँ है तो गर्मी वाली जऊँ सब्जी हाँ तो खर खेती करा था। ता कुशवाहा जी अपना के बहुत बहुत धन्यवाद के अपना ये जनबही दे खातिर हमारे कार्यक्रम माहे पधारन है
7: जी।
6: तो पहले अपना यह बताई के कई एकड़ में अपना ये साख।
7: बहुत अच्छा मौका हमें यहाँ मिला है कि हमारे माध्यम से लोगन का या स्रोतन का कुछ जानकारी मिले है। तो देखिए ऐसा है कि हम ज्यादा नहीं पे 2-2.5 एकड़ में अपन सब्जी भाजी लगाई थे और वही मापन हम खेती करी थे। हर सीजन में जैसा मान ली के ठंडी के समय में हम जैसा बरसात खत्म है तो अक्टूबर से गोभी के पारी हो जाती, सितंबर से ओकर काम चालू हो जाता है ना। इसके बाद फिर आलू के सीजन आ जाता है, प्याज के सीजन आ जाता है, और मूली है, गोभी है, टमाटर है, बैगन है, कद्दू है, लौकी है, आदमी सबके मिक्स वेज खेती आदमी करत।
6: अच्छा यह बताई के अपना पढ़े लिखे कहाँ तक हैं?
7: हम देखी बीए करे हैं।

0: बीए करे के बाद आजकल जैसन के देखा जाते है कि जो युवा वर्ग हाँ तब पढ़ाई करे के बाद बहुत कम खेती बाड़ी के तरफ ध्यान दिए थे, वहाँ सब बाहर कमाए चले जाता हैं। ता अपना जो है तब बीए करे के बाद अब यदि साग सब्जी लगाई ला है ता ये तो बड़ी खुशी की बात यह है। अपना जो साग सब्जी लगाई थे
1: जी
0: ता उमा कितना कहाँ मुनाफा अपना का मिल जाता है?
1: देखिया मेहनत आदमी तो खूब करत है, हर किसान ही करत है, पर यह सीमित रहत है मंडी भाव के ऊपर। मार्केट में का रेट चल रहा है, जैसा हमारे पास मान लीजिए समय टमाटर 2 क्विंटल रोज निकलत रहा, मंडी ले जाई लेकिन 3 रुपया किलो बिचत रहा, तो आदमी वही में मात खाई जात है। अगर यह है टमाटर 20 रुपया अगर चलागा तो है किसान के मुनाफा है, माने 2000 रुपया अगर रोज कमाए रहा है, अगर 1 क्विंटल में 2000 रुपया अगर वो रोज कमाए रहा है, 500 रुपया कैरेट अगर टमाटर जा रहा है, तो 20 दिन में समझ ली कि 40000 रुपये वो कमा ली।
0: तो कौन कौन सब्जी अपना या गर्मी वाली लगाए हैं अपने बगिया में?
1: इस समय हमारे पास लौकी है, कोहड़ा है, यह निकल रहा है, टमाटर
0: ता अपना कहे जैसा यहाँ से अपना लगाए साग सब्जी लगाए हैं तो बाजार कितनी दूर है अपना की?
1: बाजार देखी आदमी अपने रेवा में सामान आ जाता है, लेकिन हम अपने मंडी गुढ़े माँ वो करवा कह दी थे, और जब ज्यादा माल रहा थे तो रेवा भिजवा दी थे, तो अच्छा रेट मिल जाते।
0: तो मान ली के जैसा अपना टमाटर कहीं लगाई थे, करेला लगाई थे, भिंडू लगाई थे, एमा अपना खादी कौन डाली थी? खादी को प्रयोग करत हो ना अपना?
1: जी एमा खादी का है कि ज्यादा से ज्यादा एमा जैविक खाद जैसा अपन गोबर है देसी, तो देसी खाद आदमी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करी थे, वही मिक्स बेच करे खातिर का थोड़ा बहुत रासायनिक खाद आदमी डालत है, कहे के वातावरण इतना हुआ हो चुका है कि आदमी कहीं ना कहीं ओखर सूझबूझ तो करे के पड़त है ना, तो कोशिश यह करी थे कि कम से कम रासायनिक खाद जो है तो कम से कम उपयोग करे और जैविक खाद ज्यादा से ज्यादा।
0: नहीं तब अपना बिल्कुल ठीक है कही लाग है कि आज देखी आदमी अंधाधुंध है रासायनिक खाद के प्रयोग कर रहा है, जौने से हमारे किसान भाइन का कहाँ न कहाँ माटी के जो उर्वरा शक्ति है ओका हानि पहुंचावत है।
1: बिल्कुल
0: तब मनाई का देखी जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे चाहिए, तो अपना जैविक खाद के उपयोग करी थे। मान ली के साग सब्जी में ही किरबा फतीरबा बहुत ज्यादा लागा था, तो ओखे नीता ओखे प्रबंधन के नीता का करी थे अपना?
1: ओखे खातिर का हम जैविक जो कीटनाशक है अपना से बताए, सब श्रोता ध्यान से सुन ली है, अगर हो सके तो प्रयोग कर सकते हैं। एक जैविक कीटनाशक हम बनाई थोखा गोबर गाय के जो माठा होते हैं, गाय के दूध से जो माठा बनावा थे ओखा छाछ बनाई थे,
0: छाछ यानी माठा
1: माने ओखा माठा ले आयन है ना, माठा ले आई के ओमा गुड़ मिक्स कई के वह गुड़ मिक्स कई के एठे ड्रम में ओखा पानी में डाल के जैसा मान ले के अगर 200 लीटर के ड्रम है ठीक है ना, या 150 लीटर के है, तो ओमा उदाहरण के डाले हम ले आन है 1 किलो गुड़ ले आन 1 किलो माठा ओखा मिक्स कई के वही में डाल दी, 1 हफ्ता सड़ा दी ओखा, सड़ाए के बाद वो 15 लीटर के टंकी में अपना ओका यूज कर सकी थे। ओमा यह नहीं रहता है कि ओमा अलग से पानी डाला का है कि अलग से कुछ औ मिलावे का है, ओखा बढ़िया छान के स्प्रे कर दी, तुमसे काफी लाभ होता है,
0: कीड़ा
1: मकोड़ा जो होते तो मर जाते हैं, काफी अच्छा रहा था।
0: और देखी जैविक जो दवाई है कीटनाशक
1: जी
0: ता उसे बहुत निकाही होती, काहे से के यह कहा जाता है कि जितने ज्यादा हम कीटनाशक दवाई के प्रयोग करब तो कहा हमारे स्वास्थ्य के निता स्वास्थ्य में प्रभाव डालत है, हानिकारक होती है।
1: हाँ
0: ज्यादा से ज्यादा लोगन का देखी जैसा अपना बताऊते

0: लागन कि जैविक जो है या कीटनाशक बना ली जाए ता वह स्वास्थ्य का हानिकारक नहीं पहुंचावे और हमार फसल सुरक्षित रही आवत
1: ही। मार्केट में जाते है तो चीज अच्छी रहती, लोग बाग खाते तो सबसे पहले वह चीज बिकत। तो हम तो यह कहा कि सलगे स्रोतन से कि सब बहनी भाई जो हैं तो जैविक खाद के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

0: लोग बाग बीच में एक खाद की बहुत ज्यादा समस्या रही बरसात में, खाद नहीं है तो खेती नहीं है, आदमी आधारित हो गया खाद में।
1: जो जैविक खेत
0: जैविक
1: जैसे
0: अगर
1: गोबर
0: खाद
1: वाली।
0: अपने पास है और खाद आदमी बनाए रहा है तो उतना ज्यादा आदमी का परेशानी नहीं होती है, और खाद अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: नहीं तो गोबर के खाद तो अपने
0: गोबर
1: पास
0: तो
1: आई
0: है
1: है।
0: तो खैर उत्पादन तो आदमी का, हम कही थे कि थोड़ा अगर उसका रासायनिक का डाल दें मार्केट वाली खाद का तो थोड़ा उत्पादन क्षमता बढ़ जाती, लेकिन तो ताकत रहा थी मिट्टी में वह तो जैविक खादे बनावा थी, तो ज्यादा से ज्यादा एक अगर उपयोग करिए तो वाली खाद का कम उपयोग करे कि अपने कौ रही, अपन धरती बची रही, माटी बची रही, बहुत अच्छा रही।
1: अच्छा यह बताई कुशवाहा जी कि अपना जितना लागत लगाई थी
0: जी जी
1: खेती में
0: जी जी
1: ओखा घटाई के कितना तक लगभग मुनाफा कमाई ली थी।
0: देखिए यह हम पहले वो बताए रहे बीच में अपना के कि यह मार्केट के भाव के ऊपर रहा था। अब जैसा प्राकृतिक आपदा अगर ना पड़ी, जैसे हम बढ़िया खेती के जाए, हमारा 1 लाख के माल है, 1 लाख की सब्जी तैयार ही, अगर हम पथरा पड़ गया तो गैन काम से है
1: हाँ प्राकृतिक आपदा भर ना आवे।
0: ना। अभी जैसे बीच में 2 साल पहले ऐसा पथरा पड़े टमाटर में कि छेंदा हो गया, और फिर दूसरे उस साल ऐसे हल्का पथरा पड़ा तो वो डिस्टर्ब कर दीस, तो आदमी मेन रहा था प्रकृति अगर साथ दे दीस तो लाख 2 लाखों आदमी कमा लेते हैं, अगर प्रकृति गड़बड़ कर दीस तो आदमी फिर मान ली के मेहनत नहीं सूल हो पावती आए। तो किसान मेहनत तो करत है लेकिन अगर प्रकृति साथ दे दीस तो बहुत अच्छा है, नहीं साथ दीस तो बहुत बेकार है, तो आदमी का संतोष फिर वहीं में करे के पड़ा था। तो ऐसे एक माह पूरा जो यह खेती रहा थी, सब्जिन भर की खेती नहीं, चाहे गेहूं के हो फसल हो, जैसा गेहूं अगर पत्थर पड़ गया तो किसान हार जाते है ना, तो मेन है प्रकृति, बारिश अच्छी हो गए तो धानो अच्छी हो जाती, रेटो अच्छा मिल जाता है मार्केट में, चला गया तो शासनों अच्छा रेट दे रही है ना, तो हम किसानन का अच्छा पैसा मिल जाता।

सुनैया भैया बहनी, अबे मनई सुनत रहा भेंट वार्ता, जेखर विषय रहा जागरूक किसान। वार्ताकार रहे राजभोर कुशवाहा, ऐसे बतकहाँ चलाइन थे गणेश भाई। सुनैया भैया बहनी, अपने देश मां कईक मेर के त्योहार मनावा जात है, और सबको मिलजुल के आपसी भाईचारा का बनाई के त्योहार मनाई थे। ऐसे नए राजा संक्रांति के त्योहार उड़ीसा राज्य मां बड़े धूमधाम से 14 जून से लेके 16 जून तक मनावा जात है। यह त्योहार नारी अमानसून के त्योहार आए। यह त्योहार हर साल जून के मध्य मिथुन संक्रांति में पड़ा था, जो कि मानसून के आगमन के प्रतीक माना जाता है। पहल दिना पहली राजा संक्रांति, मुख्य दिना राजा संक्रांति या तीसर दिना बासी राजा संक्रांति मनावा जाता है। स्थानीय मानता है कि यह दौरान धरती माता रजस्वला होती है, यहीं से 3 दिन तक कृषि से जुड़ा कौनो काम नहीं किया जाता है। अविवाहित अविवाहित महिला यह 3 दिन तक आराम करती हैं, और कौनों खेती किसानी संबंधित काम नहीं करती आहीं। और धरती माता का विश्राम दिन जात है, जौने अगली फसल के निता नवा ऊर्जा उर्वरता प्राप्त कर सकें। यह दिवस माँ महिला और कुमारी कन्या घर में कौनों काम नहीं करती आहीं, उन नवा कपड़ा पहिर के पैर में आलता लगौती हैं, पारंपरिक गीत गौती हैं, आ ऊंचे पेड़ में झूला डाल के त्यौहार के आनंद मनौती हैं। और स्वादिष्ट पीठा, जो कि एक प्रकार के मीठा केक होती, वो खा एक दूसरे का बढ़ती हैं। त्यौहार के अंतिम दिना माँ धरती माता के रूप में पत्थर के चक्की का हल्दी और सिंदूर से सजाए के पवित्र स्नान करावा जाता है, तब जाए के अनुष्ठान पूर्ण होते है। यह दिवस माँ स्थानीय खेल के आयोजन किए जाते हैं, जैसन कबड्डी खो खो खेला जाता है। अजो टीम जीत हासिल करती ओखा सम्मानित किए जाते हैं।

0: सुनैया भैया बहनी, अब होत लाखी चलक जूना त चलक पहले बता दी चौपाल कार्यक्रम के पता। त लिखी चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा, पिन है 4860001। तिह पता में रही अपना पाचन के पाती के परीक्षा व आज्ञा दे चौपाल के सब सुनैया भैया बहनी इनका लालन भाई के राम राम जय जवान जय किसान।
1: समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता।
2: हम आकाशवाणी

0: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 8:35 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
2: जी,
3: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
2: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
3: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
2: बिल्कुल
3: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया जो

0: तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी, उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ब्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसके में लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं, अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है
1: जी,
0: बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया, क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में, और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमेरिका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के, अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि

0: सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए?
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिद्धूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए हैं उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें
0: तो? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, जिस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में,

0: अगर फ्रैंकली स्पीकिंग जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुन्दर के पानी के ऊपर, समुन्दर के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुन्दर में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुन्दर में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुन्दर में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुन्दर से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much.

0: 15 of the over with two balls still remaining. Very, very valuable runs for India. Richa Ghosh has moved to 20 of 11. She went deep in her crease and that allowed her to get underneath that very full ball which was delivered at the stumps. And then she swung her bat hard, 72 meters far. The ball went once again, goes deep in her crease, swings the bat hard. This one was delivered outside the off stump. She miscues it, but still gets a boundary of the outside edge. India cross 150.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: तास्मिया went wide off the off stump because she did not want to get inside Richa Ghosh's arc. However, Ghosh threw her bat at it. She did not connect in the meat of the blade, ended up slicing this one. However, the ball still went over the head of the shot third fielder and skipped away to the fence. 19 runs in this over. A crucial one from India's perspective. Will this be the difference at the end of the day? One ball remaining. Tasbia Rubab wearing a stern expression on her face. Deepti Sharma ready to run at the non-striker's end. Ghosh on strike. A shot is delivery and it has been swatted away into the gap. Four more.
1: Ye laga abha ka choka.
0: 155 for 5 after 19. It was a long hop from the youngster with plenty of width on offer. Richa Ghosh had her weight on the back foot and she was able to pull it away into the gap. There's a geometry lesson for all of you. Deep mid-wicket, long on, both were stationed on the boundary and the ball went right in the center of that gap. She bisected it. That's what you call a bisector. 155 for 5, 6 balls to go. Fatima Sana to bowl, Deepti Sharma to bat, Richa Ghosh at the non-striker's end and Ashish Charangu to call.
2: तस्मिया रुबाब का पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ. 23 रन उसमें आए जिसमें चार चौके और एक छक्का भी शामिल था. क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रिचा घोष के द्वारा और दीप्ति के द्वारा होता हुआ इस समय एजबेस्टन के मैदान पर, जिसकी बदौलत भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 155 है 5 विकेट के नुकसान पर. ये 23 रन इस ओवर में जो बनाए हैं भारतीय बैटर्स ने, कि निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मुकाबले के नतीजे का जहां तक सवाल है. फातिमा साना अपने नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं जो कि भारतीय पारी का अंतिम ओवर है और वहां पर दीप्ति शर्मा है. पहली गेंद को बाएं हाथ के दीप्ति शर्मा ने खेल दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में. एक रन वहां पर ज़रूर मिल जाएगा उन्हें. इस एक रन की मदद से उनका स्कोर बढ़ करके हुआ 12 और भारत का स्कोर 156 5 विकेट के नुकसान पर. रिचा घोष जो कि इस समय आग उगल रही हैं एजबेस्टन के मैदान पर, देखना है कि अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगी. 13 गेंदों में अब तक 28 रन बना चुकी है. अगली गेंद और इस बार फिर से खेल दिया उस गेंद को. देखना है कि एक क्षण के लिए लगा था कि वहां पर रिचा घोष दोबारा से संभवतः उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास करेंगी. भारत 156 5 विकेट के नुकसान पर. साना की अगली गेंद और इस बार लो फुल टॉस पर आती हुई इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया. लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: रिचा घोष का बल्ला इस समय मानो आग उगल रहा हो एजबेस्टन के मैदान पर. 160 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है. रिचा घोष ने 32 रन बना लिए हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल है. 228 के लगभग का उनका स्ट्राइकिंग रेट. भारत को इसी तरीके की बल्लेबाजी की दरकार थी अपने लोअर मिडल ऑर्डर से, और रिचा और दीप्ति ने अब तक बिल्कुल भी निराश नहीं किया है. 4 गेंदों का आना बाकी है. फातिमा के इस बार शॉट ऑफ लंग गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया पटकने की कोशिश, और इस बार इस गेंद को वहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया वहां पर मुनीबा अली ने, और कोई रन नहीं इस गेंद पर. पहली डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई, और देखना यह है कि क्या अगली बची हुई गेंदों पर रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब होंगे या फिर नहीं. भारत 160 पर पहुंच चुका है जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा सकता है. अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और उसको खोल दिया फाइन लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: भारत इस समय

0: शानदार बल्लेबाजी करता हुआ दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष, चार रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के देखना यह है कि तीसरे अंपायर क्या इस गेंद को वाइड भी देते हैं या फिर नहीं। चार वाइड के रन वहां पर भारत को मिलते हुए 165, 5 विकेट के नुकसान पर। तीन गेंदों का आना अभी भी बाकी है। बाउंड्री लाइन पर जो तीन फील्डर हैं वो सभी ऑन साइड पर। अगली गेंद लेग स्टंप से फिर ज्यादा बाहर की तरफ और वाइड का इशारा आएगा। जैकलिन विलियम्स जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, अपना 91वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जिसमें वो अंपायरिंग कर रही हैं, उनकी नजरों से बच नहीं पाई ये गेंद। और लगातार दो वाइड गेंद जिस तरह से की है कप्तान फातिमा साना ने, वो कहीं ना कहीं दर्पण दिखाता है कि दबाव इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम के कप्तान पर है।
1: लुक्स लाइक शी इज ट्राइंग टू फॉलो अप घोष, शी इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट शी डजंट गेट द room to swing her arms. Keeper goes back, one of the fielders on the offside drops back, however Richa Ghosh opens her arms and pumps this one over extra cover. This was delivered outside the off stump at 105.5 kilometers per hour on a length. Richa Ghosh however was able to get underneath it, yet she was not able to find the desired timing. The ball slows up in the outfield and the pair of Deepti and Richa have to settle for a couple. 168 for 5 the score moves to. It has been a long over from Fatima Sana because of those couple of wide deliveries. Two deliveries still coming up. Two legitimate balls still to go. Here comes Fatima. And she's got Richa Ghosh out bowled. Almost as if Ghosh had decided yesterday that she was going to swing her bat and try and deposit this one over long on. She swung it even before the ball arrived. It was on a length. It was there to be hit. And hence an awry smile on the face of Ghosh's, on the face of Richa Ghosh, because she knows it was there to be hit. However, it seems like, according to the replay on our monitors, that it might have been the wobble seam delivery, which sometimes can land on the seam and generate extra bounce, sometimes can land on the side and skid through. It generated a bit of extra bounce and clattered into the top of the off and the middle pole.
0: 34 रनों की शानदार पारी खेल करके ऋचा घोष, जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं, वो वापस इस समय पवेलियन लौट चुकी हैं और जिस तरह की पारी की दरकार थी टीम को उनसे, उन्होंने ठीक उसके अनुरूप आज बल्लेबाजी की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर अंतिम गेंद का आना बाकी है। श्रृंखला पाटिल इस समय बीच मैदान पर हैं और इस पारी के अंतिम गेंद का सामना वो करेंगी। देखना है क्या कुछ कर पाती हैं। 9 पारियों में 26 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं और 74 का उनका स्ट्राइक रेट। फातिमा साना तैयार अगली गेंद करने के लिए। लेक्सम से बाहर की तरफ, क्या वाइड होगी? जी हाँ, एक बार फिर से गेंद वहां पर वाइड। लगातार इस ओवर में यदि बात करें तो वाइड का सिलसिला देखने को मिला है। तीसरी वाइड गेंद जो कि कप्तान फातिमा साना करती हुई, 7 के रन इस ओवर में भारत को मिल चुके हैं उपहार स्वरूप। और जैकलिन विलियम्स ने एक बार फिर से कोई कोताही नहीं दिखाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि लेक्सम से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद है, दोनों भुजाओं को जमीन के समान अंतर फैलाकर उन्होंने वाइड का इशारा किया। फातिमा का ये लंबा ओवर क्या इस गेंद के साथ समाप्त तो होगा या फिर एक और वाइड या नो बॉल? अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहती थी LBW की वहां पर अपील। स्टंप के बिल्कुल सामने जाकर गेंद उनके शरीर पर टकराई थी और देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या फैसला होगा।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: The score was reading 169 for 6 after
6: 19. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक

0: रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: Frontier Models is spearheading global innovation.
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की।

0: दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन

0: आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत

0: तारीख को तौसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस जैसे एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैक्रों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैक्रों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए

0: गद्दारी को मुस्तहकम करें। वज़ीरे आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोज़ा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त, पॉलिसी इस्लाहात, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ रابطہ है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी

0: सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवन पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उथनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमतनामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों में इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Team has been brought about with the change of regime. A few months ago, Wahab Riaz took over. He was very, very adamant in saying that we need to galvanize the way we bat in T20I cricket. He summoned some youngsters into the team, and since then we have seen this approach. Currently, Muniba Ali batting on 25 and Aisha Zafar batting on 12. The only two Pakistani batters who have scored centuries in women T20Is are in the middle, and the drinks break has now come to a conclusion. Deepti Sharma once again has the ball in her hand, the only successful bowler for India so far. She begins the 7th over, delivers this one from over the wicket on a drivable length, and in a very measured manner, Muniba Ali gets onto the front foot, square drives it towards the fielder at deep cover, who runs to her right and then cleans it up. In the drinks break, we saw animated conversation from India's bowling coach Avishkar Salvi, who was on the park having a conversation in the team huddle. And we hope that the words of wisdom that he gave would work, and we will see its effects soon. Deepti Sharma meanwhile delivers this one from around the wicket to the right-hander, and Aisha Zafar nudges the ball back to the bowler. 53 for 1 after 6.2.
2: 53 एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अराउंड द विकेट वहां पर दीप्ति शर्मा और गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई कोताही नहीं, बहुत ही सफाई के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया और यहां पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता हुआ आयशा

0: का जफर, जिनसे काफी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम को निश्चित रूप से रही होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, शतक लगाया था, लेकिन यहां पर दीप्ति शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता कर दिया है मात्र 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस गेंद को जैसे ही उन्होंने अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, स्वीप किया था, लेकिन फाइन लेग जो कि 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर मौजूद था, कोई गलती वहां पर नहीं हुई और इस तरह से उस कैच को मुकम्मल कर लिया गया। तो एक और झटका पाकिस्तान की टीम के लिए। स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी।
1: विकेट वंस अगेन फॉर दीप्ति शर्मा, शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू। व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से, इन ट्रबल कॉल दीप्ति, and she has delivered with not just one but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3, and invokes youngster Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket, is witnessing another iconic match because both the teams are tussling it out there. Deepti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg, for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produced that wicket off the bowling of Deepti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepti beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover, where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आहा,
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडन नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और दो सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक एक रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहां पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की हैं। शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर एक रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस एक रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुंचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस एक रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58।

0: मन दो विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरनी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरनी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजवेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और साइरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मजे की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
1: राइट, सो थर्ड विकेट डाउन नाउ, नटालिया परवेज मेक्स हर वे टू द मिडल एंड श्री चरनी प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर इंडिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर, द प्रेफर्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर शुड आई से, व्हाई डिड आई से दैट, विल टेल यू आफ्टर दिस बॉल। अराउंड द विकेट शी कम्स इन टू डिलीवर व्हाट विल बी द फिफ्थ बॉल ऑफ द एट ओवर। दिस वन An attempted slog sweep from Natalia Parvez, which lands in the vacant region at mid-on before Kranti Gaur can run in from long-on, pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken, so not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder. She can bat a bit too, however... Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either, yet she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan and they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire Claire Polosak. This one was delivered from around the wicket. Pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there. Did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS. And Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
0: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है, हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहां पर दीप्ति शर्मा ने, अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहां पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो DRS के लिए जाएंगे। तो देखना यह है कि TV अंपायर का वहां पर क्या निर्णय आता है। निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नज़र आ रही थी और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज 1 रन बनाकर खेल रही हैं, इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी।
1: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not, because remember Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not, and ultra edge tells us the

0: According to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning, or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds. Pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
1: So, Natalia Parvez abhi bhi beech maidan par ek ke vyaktigat score ke saath tappa khane ke baad gend drift hokar bahar ki taraf nikal rahi thi aur umpire's call thi wo wahan par जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहां पर. इसी बीच रन आउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेजी के साथ. दीप्ति ने वहां पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी. देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं. लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर. तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में. नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा और इस बार मिडल ओवर स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर. मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की. कवर क्षेत्र की तरफ आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे. इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं. अराउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर. डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवीं गेंद पर और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद का आना बाकी है. पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने. अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए और फ्रंट फुट पर आकर हल्के से गेंद को पुश किया. एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62-3 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Natalia Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in between because the ball landed or dipped in the block hole. She was able to squeeze it back to the bowler. Deepthi Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur. Might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal. And Claire Polosak looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepthi Sharma have run to her, hugged her. She has started celebrating but the umpire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it up and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball, whipped the bails off.

0: However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground, and Claire Polosak has not even attempted to use technology. She says, I've got eagle eyes. I've seen it with my own eyes. It is not out. Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery, flighted outside the off stump, chipped towards Kranti Gaur at long off, who fumbles and therefore allows two runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
1: बिल्कुल, तारीफ करनी होगी वहां पर क्लेयर पोलोसेक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया. और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर. इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहां पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, चार रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: स्वीप करने के अंदाज में खेला था मुनीबा अली ने इस अवसर पर, और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई चार रनों के लिए बाहर चली गई. श्री चरणी, जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं. 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं.
0: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery, lofts this one over, extra cover does Muniba Ali. The leaping fielder at the edge of the 25-yard circle would not be able to get to it, and hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off by Shree Charani. One ball remaining in the 10th over, and Pakistan thus far seem like they are on track, given that India was 65 for 2 at the end of their 10th over. Next delivery induces the edge, does Shree Charani, but there is no slip in place, and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered too, because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepti Sharma, her three overs have been used. And Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team. But Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means there could be trouble when it comes to death.
1: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए. और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को तीन ओवर करा के. श्री चरणी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए. 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, एक सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं. और श्री चरणी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं, और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएं हैं. फिलहाल पाकिस्तान 72, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे. तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है, लेकिन 1 विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया.
0: Shreyanka Patil begins a fresh over, and something interesting has happened. This was delivered from around the wicket on a length, and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball, however the non-striker came in the way and Shreyanka was not able to stop the ball, and hence the single was taken. Shreyanka looks at the umpire and says that this is not fair, but the umpire shakes her head. Next delivery delivered

0: able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region, and she is currently on the floor.
1: Yeah, thodi bahut peeda mein zarur hai, lekin bahut jald khel ek baar phir se shuru hoga. Aur Pakistan ki team ki shuruaat jaisa ki humne kaha ki achhi zarur hui, lekin uske baad lagatar antaral ke baad भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली. दो विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, एक विकेट श्री चरनी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है. श्रियंका पाटिल का ये दूसरा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी. मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है. 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 का स्ट्राइक रेट है. और बाकी के बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नजर आए. पाकिस्तान की टीम की जहां तक सवाल है, गुल फिरोजा की बात करें, आयशा जफर की बात करें या साइरा जबीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नजर आए. लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को एजवेस्टन पर मिले.
0: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out, because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest not just for India but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75 for 3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
1: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था. अगले गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया. पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75-3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है. 2 गेंदों का आना बाकी है. श्रियंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास. सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड की तरफ. क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है. काफी नजदीकी मामला हो सकता है तरपर.
0: गेस हू द फील्डर इज? दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया. The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat, or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepthi Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her ground at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
1: क्या सटीक निशाना था वहां पर दर्पण दीप्ति शर्मा को? और मुझे याद आता है कि किस तरह से क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने. एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहां पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुंची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई और वहां पर जो यूपी के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहां से उनको अपनी छत्रछाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसे ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है.
0: She was born with it, isn't it? She was born with it. The talent was gifted to her by Mother Nature. Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba

0: Mumba managed. She hit five boundaries in that innings of hers. And Shreyanka Patil's over has produced a wicket finally. Remember, two drop catches of her bowling. This doesn't go into her account, this run out, but it produces a wicket for India. And another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil has spilled herself on her length in line with the stumps. Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler, who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी। इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफ्ब्रेक गेंदबाजी करती हैं। और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नज़र आ रही हैं। बल्लेबाजी में मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से। देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर। कोई रन नहीं बनेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार। इस बार लेक्सम से काफ़ी ज़्यादा बाहर। निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा। इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। शेफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से। जेमिमा रॉड्रिक स्मृति थी वहां पर, दरअसल उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है। वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की, खाता भी अपना नहीं खोल पाई 0 के स्कोर पर। 6 गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है। धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए।
0: गेट शेफाली टू बोल अ लिटिल बिट मोर। Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot. 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. The last ball of the previous over, I said Shreyanka Patil dropped a catch. However, the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil, so she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz meanwhile has now come out to the middle. She is the most experienced batter in this team. In fact, a lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward, does Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken that gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. runs in the Shefali.

0: Natalia, once again, a full-length delivery outside the off stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid-wicket, where Radha Yadav does the mop-up job. A comfortable single has been taken, but singles won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs. Safe to say that India now are in the driver's seat.
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. और स्मृति मानधना की भी तारीफ करनी होगी, 68 रन की बेहतरीन पारी और उसके बाद दो शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण.
0: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch at extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan are collapsing. Pakistan are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line, tried to go inside out over extra cover, but could not find the desired elevation. Stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls without scoring any boundaries is Natalia Parvez. Pakistan down in the dumps, 79 for 6.
1: तो 26 रन बनाते बनाते पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट गवा दिए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ. और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें तो दर्पण, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन. तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी. लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया. नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्री चरनी वहां पर अपने ओवर को जारी रखती हुई, पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं, रमीन शमीम. देखना है कि यहां पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं. पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है. श्री चरनी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्टन पर.
0: ओवर द विकेट डिलीवर्स दिस वन नियर द ऑफ स्टंप एंड इट वाज पुश्ड टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल बाय शमीम हु गेट्स ऑफ द मार्क. द नेक्स्ट डिलीवरी कम्स अराउंड द विकेट, डज Shri Charani delivers this one to Alia Riaz. Once again near the off stump, Alia Riaz with a deft push towards mid-off where the captain fumbles. Harmanpreet Kaur with a little bit of a misfield allows 2 runs and hence Alia Riaz takes herself to 3. Pakistan 82 for 6. Next delivery of Shri Charani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or thereabouts. Riaz has to adjust into a defensive push.
1: 44 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को और 4 विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के. अगली गेंद श्री चरनी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप्स के बीच से निकलकर ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुँचती हुई बिना किसी रन के. पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकती है. अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली. लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में. आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 42 गेंदों में 88 रन। पाकिस्तान को जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन शफाली वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश, कामयाबी मिली, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़कर के अब 84, 6 विकेट के नुकसान पर। शफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शफाली वर्मा की। 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के। शफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से बाएं हाथ के बल्लेबाज रमीन शमीम के लिए और इस बार इस गेंद को स्वीप किया है, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे एक रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन की मदद से 85, 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद और रनों के बीच का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने, थ्रो किया, लेकिन तब तक दो रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और रमीम शमीम। इन दो रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंची 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87, 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी। ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है।
0: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Aloysius Sheridan, who is in the chair of TV Empire right now, matters a lot. It is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if she decides that the ball is hitting pad first, we will go to the ball tracking replay and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
1: जी, काफ़ी नज़दीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे और वहाँ पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था, लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 6 विकेट के नुकसान पर।
0: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them. Leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
1: Yeah, our machine ke

0: पीछे एक मानव जरूर होता है और यहाँ भी हमने वैसा ही देखा। फिलहाल अगली गेंद पर एक रन का इजाफा, 88 छः विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है। और अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूँगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा। और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
1: Absolutely, it's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim, and that calls for a drinks break. The final one of this particular match, Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of flexibility going into the final 6 because of the 2 overs, 2 excellent overs delivered by Shefali Varma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Shri Charani and Shefali Varma, the 6 bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902 and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusener, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground, and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
0: Yeah, और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे। T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो 4 मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें सिर्फ 1 जीता था। और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत 4 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था, और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों दूर है, मीलों आगे है पाकिस्तान से। 3 नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि 8वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो कागज़ों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब तक नज़र आया है।
1: However, there is something to play. There is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, 3 contenders for the cup. Only 2 will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Shri Charani will begin bowling. What is the 15th over of the innings? Delivers a tossed up ball which Shamim gets a long stride forward to. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards the square leg region. That will allow for a comfortable single, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shri Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Shri Charani. Shri Charani wanted to run towards her right and attempt a catch. However, the non-striker was in the way.
0: जी हाँ, non-striker की वजह से Shri Charani उस catch को लेने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान फिलहाल 91 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैटर को, और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता। समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और इस बार इस गेंद

0: को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा दूर नहीं गई और वहां पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ। सातवें विकेट का पतन हो चुका है। रमीन शमीम के रूप में 4 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों का सामना करने के बाद और श्री चरनी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई। तो भारत अब काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ, उसको खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का। तो 7 विकेट का नुकसान। श्रियंका पाटिल वहाँ पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब 7 अपने बल्लेबाज गवा चुकी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties, but Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Sri Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92/7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Rameen Shamim on that occasion, ended up slicing it. An excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point. And because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what she did earlier. End of the 15th, 92/7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़ी माँ, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: श्री चरनी के 4 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है और 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरनी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है शफाली वर्मा के द्वारा और शफाली वर्मा की पहली गेंद पर 1 रन और दूसरी गेंद को खेल दिया था वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले की गेंद फील्ड होकर पहुँचे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहाँ पर। एक अच्छा प्रयास वहाँ पर क्षेत्र रक्षण का गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा, और वहाँ पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुँची थी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर और अब नाशरा संधू तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को स्लॉग शिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन 1 रन का इजाफा इसी बीच ज़रूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधू इस 1 रन की मदद से 3 पर और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह से चूकी, पैड पर लगी लेकिन नेक्सम के बाहर जाकर गेंद पैड पर टकराई थी जिसकी वजह से कोई अपील नहीं की वहां पर शफाली वर्मा ने। गेंद की रफ्तार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी शफाली वर्मा की, लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं अपने 91वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
1: शिफाली वर्मा आस्क ऋचा घोष, आवाज़ आई क्या? And Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan.

0: Pakistan with this boundary.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: अंतिम गेंद गाना बाकी है, 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में। गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा। गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 7 विकेट के नुकसान पर। आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं और नाशरा संधू ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं।
0: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember, net run rate could come into equation because Australia and South Africa are both the part of the same group. Yes, Pakistan not considered one of the contenders in women's cricket. They have shown a lot of improvement, but they are still far from being amongst the contenders. Netherlands and Bangladesh are also a part of this group, but those two teams are also lower ranked sides. So many believe that it is going to be between India, Australia and South Africa. Only 2 teams can progress. Anyhow, Deepti Sharma has now been given the ball in hand. She will be delivering what is her final over around the wicket to the right-handed Nashra Sandhu. She delivers this one down the leg side on the fuller side of good length, and Nashra Sandhu's deft sweep has been cut off by Kranti Gaur, who runs to her right from short fine leg and makes a tumbling stop. Interestingly, Kranti Gaur has bowled only 1 over so far, and I would like Harmanpreet Kaur to give the youngster a couple of overs in the remaining 3. Anyhow, a single was taken off the first ball, and now Deepti Sharma halts in her delivery stride, looks at the non-striker and almost signals, mind you, do not leave the crease early because I won't spare you the next time. Deepti's done it before and she won't shy from doing it. Next delivery, tossed up delivery, and it has been lofted towards mid-wicket, where Jemima Rodrigues will make no mistake. She runs in from the boundary, settles underneath it, grabs it in her safe palms, and then gives the ball a little kiss before dropping it on the ground and running in celebration to celebrate the downfall of Alia Riaz. It was tossed up, was in the slot at the stumps. However, the mid-wicket boundary was too far for Alia Riaz to clear. She ends up finding Rodrigues, who makes no mistake in pouching it. And with that, Riaz has been dismissed for 18 of 17 balls. Pakistan 105 for 8. Safe to say, India are now on the doorstep of victory.
2: भारत निश्चित रूप से जीत के द्वार तक पहुंच चुका है और अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं। अगर ऐसा मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, 22 गेंदों में 66 रन पाकिस्तान बना पाए ऐसा सोचना शायद एक सपने के बराबर है इन परिस्थितियों में। और ये देखते हुए कि अब उसके सिर्फ 2 ही विकेट बाकी हैं, भारत को 2 विकेटों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए ओवर की शुरुआत, बल्कि दीप्ति शर्मा अपने ओवर को जारी रखे हुए हैं और वहां पर तस्मिया इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी हैं। पहली गेंद को बैक टू द बॉलर खेला दीप्ति शर्मा ने। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं अराउंड द विकेट आते हुए, और निश्चित रूप से कहना होगा कि यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने आज जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया एक बार फिर से हवा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ तस्मिया ने, और जेमिमा रॉड्रिक्स वहां पर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने लपका और ऐसा लगा दर्पण एक क्षण के लिए कि मानो रिप्ले हो पिछले वाले विकेट का।
0: यस, एब्सोल्युटली द सेम थिंग हैपनिंग अगेन। रॉड्रिक्स टेकिंग द कैच एंड दीप्ति शर्मा विद इट हैज पिक्ड अप हर 4th विकेट ऑफ द डे, and with that she has drawn level with Tipacha Puttawong of Thailand, which means Deepti Sharma now has 165 wickets to her name, which is the joint most in women's T20 internationals. She is 1 wicket away from becoming the sole leading wicket taker.

0: and she still has two deliveries remaining. This over reads 1 wicket, which means the last three deliveries read W-O-W. Wow, Deepthi. Sadia Iqbal is the new batter in 16.4 overs done. 105 for 9, Pakistan. Deepthi Sharma around the wicket. No, beg your pardon, over the wicket to the left-handed Sadia Iqbal, who's definitely not in the side for her batting credentials. Delivers this one on a full length at the off stump. 71.6 kilometers are the speed of that delivery, and that allowed Sadia Iqbal to get onto the front foot, dink it towards the cover region and pick up a comfortable single. With this single, Sadia gets off the mark. Pakistan move to 106. One wicket left, one ball remaining for Deepthi. Can she pick up a fifer? Here she runs in. Slog sweep straight to Harmanpreet Kaur, who holds on to the catch. Deepthi has a fifer. She is the leading wicket taker in Women's T20 Internationals. With this breakthrough, her 166th in T20 Internationals, alone at the top of the mountain, the player of the tournament from the 2025 ODI World Cup has begun the T20 World Cup campaign in style. India win by 64 runs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में. यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम. और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था, और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में. भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से स्मृति मानधना ने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली. इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी. 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा. 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए. शुरुआत उनकी अच्छी हुई. मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई. और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए. अब वो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं. एक शानदार सफलता. और श्रीचरणी ने भी आज भरपूर योगदान दिया. शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा. तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही भारत की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत ने 17 ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर, और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया. तो मैं आशीष चरणगू, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ. अब से थोड़ी देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
6: Player of the match.
7: जब इरादे चैंपियन जैसे हों तो शुरुआत भी चैंपियंस वाली ही होती है. बर्मिंघम के मैदान पर आज टीम इंडिया ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, बल्कि पूरे विश्व कप को एक संदेश दिया है. भारत यहां हिस्सा लेने नहीं, इतिहास रचने आया है. बल्ले से दम, गेंद से धार और मैदान पर शान

0: शानदार जज्बा। भारतीय खिलाड़ियों ने खेल के हर विभाग में पाकिस्तान को 64 रन से पीछे छोड़ते हुए विश्व कप अभियान का आगाज यादगार बना दिया है। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे होता है एक ऐसा सितारा जिसने दबाव के क्षणों में टीम का रास्ता रोशन किया, जिसने अपने प्रदर्शन से मुकाबले की दिशा बदल दी। और इस कार्यक्रम यानी पोस्ट मैच शो का नाम ही है प्लेयर ऑफ द मैच। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल। साक्षी, स्वागत आपका।
1: Thank you so much, Anand. And indeed, what a start for India in the ongoing ICC Women's T20 World Cup to have just defeated Pakistan in a very convincing manner by 64 runs. And what a feat over there for Deepthi Sharma today. A 5-wicket haul, thereby also becoming the only bowler in the women's history of T20 cricket to have achieved, or should I say, taste that sweet victory of getting the most number of wickets. More to talk on this, I'm joined over here by Vaishali. Along with her, we have with us, of course, Colonel Bhupraj and Mona ji. Good evening, everybody.
2: Good evening.
3: Hi, good evening.
1: Now, quickly to start with you, Colonel Bhupraj, I'll come to you. A very good start for the Indian women in the T20 World Cup this season.
3: Oh yes, it was a great match. There were some jitters, you know, in the first six overs. But thereafter, the way our spinners bowled, slightly slow in the air, with that loop, and deceived the Pakistani batsmen. It was a great display of spin bowling by Deepthi Sharma and Shri Charni.
0: जी बिल्कुल, चार ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट और T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। श्री चरणी ने 3 विकेट लिए, शेफाली वर्मा के नाम 1 विकेट। चर्चा थी मोना की पिच पर थोड़ा सा टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और विश्व कप के पहले मैच में बहुत कॉन्फिडेंस देगा हरमनप्रीत कौर को।
4: बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखा, और टॉस के समय हमने जैसे देखा था जब हरमनप्रीत ने बल्लेबाजी का चयन किया था, तो यही उनका आकलन था कि शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पिच और बाद में स्पिनर का इसमें रोल होगा। और बिल्कुल सटीक आकलन था, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से, हम पहले भी बात करते हैं, श्री चरणी ने जिस तरह गेंदबाजी की और दीप्ति शर्मा क्या कमाल की प्लेयर है। ऐसे लग रहा है कि जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल जहां छोड़ा था, वहीं से इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच पकड़ लिया है। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दूसरे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में थी, वो पहले ही मैच से इस जबरदस्त फॉर्म में है। और पाकिस्तान के लिए यहाँ बहुत निराशा हाथ लगी।
0: चलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा की तरफ, जहाँ से बात हो रही है।
5: I'm very grateful and I like this kind of wickets, and I think it's all credit goes to the team I'm grateful that Hanumanji is great and I like ICC tournaments, I think, because from there I finished, from there I started, so I like it, yeah.
6: What was the key to bowling on this surface today?
5: I think because it's turning, so I vary my pace in every ball and every over, that helped me a lot, yeah.
6: Slow or quick? As we look at your wickets here, you slowed it up quite nicely, especially to the left-handers.
5: Yeah, because it's turning, so I just have believe that I have to bowl a little bit slower in the air and just believing in myself and bowling in the right areas. That's what I was doing, yeah.
6: How important is your experience in England? I know you've played international cricket, but you've played a lot of 100 cricket here as well. You know these grounds well.
5: Yeah, it's an amazing crowd here and a lot of people are coming and supporting Indian team today, and that's what we want in every game, that's keep coming and keep supporting. And especially I wanted to mention about Smriti and Haridi's partnership. From there, we threw the momentum.
6: You went through that difficult phase. It's well documented. You went a few games without wickets. Are you a worrier, a fretter, or do you just know class is permanent?
5: Actually, I was not worried about when I didn't get wickets, but I always believe in myself that whenever the right time will come, I'll step up for the team, and that's how I play and bowl, yeah.
6: Well, you definitely stepped up today. That was a magnificent performance. Well done, Deepthi.
5: Thank you so much.
0: प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी तादाद में दर्शक आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि किसी भी T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा दर्शक आज के मैच में आए थे। जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है वो 18,814 दर्शकों का आ रहा है। इससे पहले ये कीर्तिमान 6 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान के बीच

0: मैच में ही बना था, जहां 15,935 दर्शक थे। दीप्ति के प्रदर्शन पर हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कर्नल की किस तरीके से महिला क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी और टीम इंडिया का रुतबा कैसे बढ़ रहा है।
1: हाँ जी, ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया प्लेयर्स में, एंड वो आज दिखाई पड़ रहा है। एक टाइम पे तो लग रहा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो आपने जज्बा है अपने प्लेयर्स का जीतने का, वो दिखाई पड़ा, एंड दैट टर्न द मैच इन अ फेवर।
2: Right, and also to let tell our listeners today, this is actually the fourth biggest defeat for Pakistan in women's T20 World Cups. Earlier, it was again the topmost is 114 versus England in Cape Town 2023, then 94 versus Australia in 2014, 68 versus England in Chennai versus England in Chennai in 2016, and 64 that was today against India in Birmingham. Vaishali, आपके पास आती हूँ। जब कोई भी देश एक सीजन की शुरुआत करता है या टूर्नामेंट की शुरुआत करता है और इतनी बड़ी तादाद से कह लीजिए इतनी बुरी तरह हारता है, तो मेंटली एंड मॉरली ये कितना डिप्लीटिंग हो सकता है उस देश के लिए टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करते वक्त। मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पर पाकिस्तान की खासतौर से।
3: पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, लेकिन जिस तरह से वो हार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे आफ्टर 10 ओवर के बाद, लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के कैप्टन पे बहुत एक लीडर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखें हमारी हरमनप्रीत कौर है वो एक बेहतरीन लीडर हैं, उनको ये पता है कि किस बॉलर को किस वे में और कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ही फातिमा की अगर बात करूँ तो वो उतना कॉन्फिडेंट थी, बट जैसे उनकी विकेट गई एंड द वे सी रिएक्टेड, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बैकफॉल पर भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम थोड़ा सा उनका मोरल डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि एक ये फाइनल मैच की तरह खेला जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके लिए ये मैच जीतना भी, और जो वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट सेकंड मैच उनके पास होपफुली है, और वो वहाँ पे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मोरल डाउन हुआ नहीं है, बट हो सकता है और आगे सेकेंड मैच को देखते हुए।
0: जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच में हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी रेड्डी साहब, बताएं क्या बताना चाहते हैं आप। जी

0: जी हाँ, एक बढ़िया पॉइंट उठा रहे हैं कर्नल। अगर आपसे बात करें तो पहले भी चर्चा हो रही थी कि यष्टिका खेलेंगी, भारती खेलेंगी, भारती को स्टार्ट मिला। अब ये हरमन और अमोल मजूमदार को तय करना है कि भारती को एक और मैच देंगे या यष्टिका भाटिया को लेकर आएंगे नेक्स्ट मैच में।
1: मेरा ख्याल से यष्टिका भाटिया को चांस मिलना चाहिए, एंड उसने भी ये जो प्रैक्टिस मैच हुए हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं कि उसको चांस मिलेगा।
2: Right, and a good news for all our listeners over here that this is indeed the biggest win by India in the T20 World Cup ever. This margin of victory that we have achieved today is the third biggest win that India has achieved. Prior to this, it was 82 against Sri Lanka and 72 versus Bangladesh, and today we have gone on to make that record. Now, coming to specifically, Mona, I'll come to you. आपके पास कि दीप्ति शर्मा की थोड़ी और आज बात करना बनता है। 166 is the number of wickets. And I remember जब शो की शुरुआत हुई थी हमने तब ये बात करी थी कि आज अगर वो 5 विकेट्स ले लेती हैं तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट अगर हम बात करते हैं तो T20 के अंदर तो बन जाएंगी। 166 पे पीछे थाईलैंड की थिपाचा पुत्तावोंग है और उनको भी आज वो आगे पीछे छोड़ के चली गई है, निकल गई है। क्या आपको लगता है ये सीजन उनका बेस्ट सीजन जाने वाला है दीप्ति शर्मा का?
3: देखिए अभी तो ये पहला मैच इस टूर्नामेंट

0: performance. Nice Thank short you. Answer there at the end. Harmanpreet Kaur, the winning captain.
1: जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी हरमनप्रीत कौर की बातचीत में, और उन्होंने साफ कहा कि ये एक टीम परफॉर्मेंस है। मुना, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जीत के बाद कई सारी कमियां थोड़ी छुप सी जाती हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर में 21 रन, क्रांति गौड़ 1 ओवर में 14 रन, क्या रेणुका सिंह ठाकुर को बाहर रखना का जो फैसला था उस पर विचार करेगी?
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरुंधति रेड्डी का सिर्फ गेंदबाजी नहीं, फील्ड में भी जो उनका प्रदर्शन था आज, बिल्कुल अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाई। और रेणुका स्कोर टीम का हिस्सा है, जो हम बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप की टीम है, और काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो मुझे लगता है खासतौर पे जबकि अमनजोत नहीं है, काश्री नहीं है, तो एक रेणुका का होना टीम में ज़रूरी। मुझे लगता है अगले मैच में शायद हमें ये बदलाव देखने को मिलेगा।
3: जी, और इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी जरूर। जी शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए और भारतीय टीम को अपनी दुआएं देने के लिए शुक्रिया। नाउ वैशाली, मैं आपके पास आती हूँ क्विकली। हमने देखा एक तरफ भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, जो बहुत खुश नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी कप्तान की भी यहाँ पर बात करते थोड़ी सी, तो जो उन्होंने बातें रखी फातिमा सना ने, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका पावर प्ले किया था चेस के समय, 6 ओवर के अंदर 52 for the loss of 1 wicket, जो आज तक का पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सबसे अच्छा या उमदा पावर प्ले रहा है। उसके बाद भी वो कैपिटलाइज करके कन्वर्ट नहीं कर पाए कि चेज में हो सकते। आपको कहाँ लगता है ये पाकिस्तानी महिला टीम पंबल करती है चेज के अंदर या टारगेट्स को ऑन बोर्ड बनाने में भी?
4: देखिए, जब हम बैटिंग करते हैं तो हमें मेनली ये देखना होता है कि आप किस फील्डर के पास कैच दे रहे हैं। फिर आपको देखना होता है कि आप अगर लॉफ्टी शॉट खेल रहे हैं तो कैसे आप खेल रहे हैं, कितना बाहर निकल के खेल रहे हैं। और आज पाकिस्तान की टीम ने जितने भी कैचेस दिए हैं वो इंडियन टीम ने ग्रैब किए हैं। सिर्फ एक अरुंधति रेड्डी के अलावा किसी और हमारे किसी भी इंडियन प्लेयर ने वो कैच ड्रॉप नहीं किए हैं। अभी उन्होंने बोला कैचेस विन मैचेस, सो हमारी टीम ने कैचेस किए और पाकिस्तान की टीम ने वो कैचेस ड्रॉप करे। जो हमारे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदना दोनों के कैचेस ड्रॉप हुए थे, वहाँ पे गेम चेंज हो गया। एंड वैसे ही यहाँ अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग के बारे में बात करें, तो जब उनकी बैटर बैटिंग कर रहे थे तो जो वो कैच उनके उठे हैं वो हमने ग्रैब करे हैं। तो यही एक डिफरेंस मेन होता है, क्योंकि दोनों साइड से बॉलर अपना काम करते हैं, बैटर अपना काम करते हैं, लेकिन एक फील्डिंग ऐसी चीज़ है जहाँ से आप इन और आउट कर सकते हैं गेम को।
3: जी, आई वुड वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड टू कर्नल भूपराज। डू यू थिंक दैट समवेयर द पाकिस्तानी वेमेंस टीम्स अप्रोच ऑफ गोइंग इन टू द चेज हैड फॉल्स और हैड सर्टन कॉन्स इन देयर अप्रोच? बिकॉज वी ऑल्सो सॉ देम मेकिंग वेरी लॉप साइडेड शॉट्स और गोइंग फॉर इम्पल्सिव शॉट्स एट टाइम्स। डू यू थिंक दैट वॉज रिक्वायर्ड, दैट अग्रेसिव इंटेंट विदाउट रीडिंग द रूम और द सिचुएशन टू वेल?
5: एक्चुअली यू नो दे वेंट फॉर दोज बिग शॉट्स and every player who was coming in tried to score big shots. It shows lack of experience on part of some of the players. I think half the team is new and they learn from experience. This is a good learning experience for them.
1: वैशाली बात कर रही थी कैचेस की। पांच जितने भी मैचेस अब तक इस विश्व कप में हुए, 36 कैचेस छूट चुके हैं, जो ये दिखाता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैचेस छूट रहे हैं। मुना, आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे। विश्व कप में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ने 200 से ज़्यादा टोटल बनाया, श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आई, कल एक तरफा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की कंटेंडर्स में से एक है, लेकिन वन साइडेड लॉस। इस विश्व कप के पिचेस पर बात करें, ओवरऑल क्या नजर आ रहा है अब तक?
2: देखिए अभी तक जो मुझे लगता है कि शुरुआत में जितने भी आपने बड़े स्कोर बना है, पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो शुरुआत में जो टीम जो बैटर्स के लिए अच्छी पिच देखने को मिल रही है और जैसे जैसे उस पर वियर एंड टीयर आ रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जो स्लो आर्म बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे हमने देखा पिछले कुछ सालों से कि स्पिनर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिल रहा है हर टीम के साथ, तो मुझे भी लगता है कि अभी तक के मैचेस को देखकर यही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाना पसंद कर रही है और उसके बाद जब गेंदबाजों की भूमिका

0: ऊपर आज ये तीसरा मैच हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा विकेट जो है स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी। तो अब जब अगले ग्राउंड पे मैच होगा तो इतना स्पिन को हेल्प नहीं करेंगी विकेट्स।
1: Yeah, because of the wear and tear and of course the used pitch coming into play again again. Vaishali, आपके पास आती हूँ, quickly आपसे पूछूंगी कि आज जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी करी है उसमें दो नाम तो हमें पता है, स्मृति मानधना और दूसरा हम बात करेंगे ऋचा घोष की, बट उसके अलावा किसी भी और भारतीय बल्लेबाज ने कोई बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हम कह सकते हैं कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक साझेदारी निभाई सामने से स्मृति मानधना के साथ, लेकिन फिर भी उनका भी रन अ बॉल ही स्ट्राइक रेट रहा। आज तो ये पाकिस्तान है, आगे हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े देश आ रहे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है हमारे ग्रुप के अंदर, क्या बैटिंग के नज़रिए से आपको कोई कंसर्न लग रहा है महिला भारतीय महिला भारतीय क्रिकेट टीम में?
2: T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी इंडिया टीम खेल के आई है एंड वहाँ पे उनका जो बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा अभी जो आज खेला उससे काफ़ी ही पुअर था एंड आज बैटिंग काफ़ी बेटर हुई है, बट हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट शिफाली वर्मा बेटर स्कोर करे एंड जेमिमा रोजर्स जो हमेशा करती हुई आती हैं बट उनका आज दिन नहीं था, लेकिन स्मृति मंदना की जो पार्टनरशिप हरमनप्रीत कौर के साथ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो नहीं होती तो 91 रन्स कि जो पार्टनरशिप है वो नहीं बनती और वो उस टाइम पे उन दोनों का होना बहुत ज़रूरी था इससे। और मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर अगर जितनी भी उन्होंने पिच पे खड़े होकर टाइम दिया है वो उस टाइम पे उस ज़रूरी था, क्योंकि इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल था उनके बिना सपोर्ट के। उसके बाद ऋचा घोष की अगर मैं बात करूँ तो ऋचा घोष अगर 10 ओवर से पहले आती तो वो शायद उतना बेटर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती जो हमने अभी देखी एंड लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से चौके एंड छक्के लगाए हैं वो भी देखने को नहीं मिल पाते।
3: कर्नल, अगर ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोनिल्यू आती हैं जो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करती है, काफ़ी डेप्थ है बल्लेबाजी में। इंग्लैंड के लिए देखें तो सोफी एकल्स्टन तक वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत की टेल थोड़ी लंबी नज़र आती है चूँकि श्री चरणी है वहाँ पर और भी जो तेज़ गेंदबाज हैं। आज के मैच में रेणुका नहीं खेली, लेकिन अगर हम बात करें क्रांति गौड़ की तो एक 3-4 बैट्समैन लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जिनसे आप बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। T20 आजकल हाई डिमांड है, टेलेंडर्स से भी आप बड़े शॉट्स की उम्मीद करते हैं, क्या जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा भारत के लिए ये मुश्किल का सबब हो सकता है?
0: देखिए, ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। हमारी टीम है जो फर्स्ट 6 बैट्समैन के ऊपर रिलाई करती है और बाद में ये 4 जो बॉलर्स आते हैं, तो वेरेज जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है या इंग्लैंड जैसी टीम है उनके पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, उनके जो बॉलर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो ये एडवांटेज उनको है, हमें थोड़ा डिसएडवांटेज है एंड बट आई थिंक आवर फर्स्ट 6 बैट्समैन शुड ओवरकम दिस डिसएडवांटेज।
1: राइट, मोना आपके पास आऊँगी। आज का मैच तो चली सारी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी एक ऐसा दिन रहा दैट वी कैन स्माइल एट द एंड ऑफ इट, लेकिन आगे अब टूर्नामेंट में और भी बड़ी टीमें आ रही हैं। दो या तीन एरियाज ऑफ कंसर्न जो आपको प्रेजेंट विमेंस क्रिकेट टीम में इंडिया भारतीय टीम में आपको दिखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि काम की ज़रूरत है, तो वो क्या होंगे?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही लगातार बात हो रही थी कि अच्छी ओपनिंग की भारत को बहुत ज़रूरत है और बहुत कुछ रिलाय करेगा कि किस तरीके से शेफाली और स्मृति मानधना पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। आज पावर प्ले में हमने 2 विकेट गवाए, रन भी 38 ही बने, तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आप पावर प्ले को यूँ ज़ाया नहीं कर सकते। आपको अच्छा रन अच्छा आज आप देखिए पावर प्ले में पाकिस्तान हमसे बेटर खेला है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, शेफाली वर्मा स्ट्रोक प्लेयर है, कुदरती वो बहुत अच्छा स्ट्रोक्स लगा के खेलती है, थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा उनको। मैच अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर उनको क्या शॉट खेलना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टीम के लिए, तो उनको अपना विकेट बचाकर खेलना है। भारती फुलमाली को खिलाना है या यास्तिका भाटिया को, तो मुझे लगता है कि यास्तिका भाटिया को अगले मैच में ज़रूर मौका देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप है, यहाँ आप प्रयोग करने के लिए नहीं आए, आपको यहाँ एक सेट टीम एक मैच विनिंग टीम उतारनी है। और गेंदबाजी में जैसे हमने पहले भी कि मुझे लगता है अरुंधति रेड्डी की जगह रेणुका सिंह ठाकुर को यहां पर उतारा जाना चाहिए अगले मैच में।
3: वैशाली, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, T20 विश्व कप जो पुरुषों का हुआ जहां अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं थी, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम टॉप 3 को नहीं छेड़ेंगे।

0: चर्चा चल रही यास्तिका भाटिया को टीम में लाने के लिए, वो नंबर 3 खेलती हैं, तो क्या हम इस विश्व कप में अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो टॉप 3 भी चेंज होगा? जमीमा को नंबर 4 खेलना पड़ेगा तब अगर यास्तिका टीम में आती हैं।
1: यास्तिका अभी तक देखी गई है कि वो 4 या 5 नंबर पे ही खेलती हुई नजर आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जैमिमा की बारी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइनअप के बाद अगर ओपनर हम देखते हैं तो उसके बाद जैमिमा ही लाई करती है बैटिंग के लिए, और वही एक ऐसी बैटर है जो वहाँ पे स्टे भी कर सकती है और आपको स्टे के साथ रन भी दे सकती है। स्कोरबोर्ड चलना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द मैच, और वो यास्तिका भाटिया आफ्टर 10 ओवर्स जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब बॉल 6 ओवर के अंदर हम कोई सामने से हमें कोई बॉलर मीडियम पेसर स्पेशली बॉल डाल रहा होता है तो वो बॉल स्विंग होती है तो उसको खेलना उतना इजी नहीं होता है। तो यास्तिका भाटिया को अगर हम देखें तो उनको स्पिनर खेलना इजी होगा खेलने के लिए, एंड मीडियम पेसर को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी।
2: Right, okay, we've spoken a lot about the Indian women's cricket team. Let's also slightly talk about the Pakistani women's cricket team. From that angle, if we now say very quickly, I want your take on that, Colonel Bhupraj. How difficult is the road ahead for the Pakistani team?
3: Well, in this tournament, I see a very bleak future for them because they've lost to us. And then there are two more good, strong teams, Australia and South Africa in this, Australia and South Africa.
0: जी, दोनों हैं इस टीम.
3: So it will become difficult for them to qualify for the semi-final.
0: तो बर्मिंघम की इस शाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही नहीं, बड़ी टीमें भी अपना चरित्र दिखाती हैं। भारत ने विश्व कप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन ये सिर्फ 2 अंक हासिल करने की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास, तैयारी और उस विश्वास की कहानी है जो किसी भी टीम को चैंपियन बनने की राह पर आगे बढ़ाता है। आज बल्ले ने दम दिखाया, गेंद ने कमाल किया और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने वो जज्बा दिखाया जिसे करोड़ों भारतीय अपने दिलों में लेकर चलते हैं। वैशाली आपका, कर्नल आपका और मोना आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
4: अभी आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from the Delhi station of Akashvani.
6: Akashvani समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
7: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है, और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास

0: सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron.